0: श्रोताओं, शेखर सेन के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 5:55 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम बातें करें सब्जियों को उगाने के एक नए तकनीक के संदर्भ में। अक्सर आप खेत में सब्जियों को उगाते हैं, लेकिन जिन किसान भाइयों के पास सब्जियां उगाने के लिए ज़मीन ज़्यादा नहीं है, यानी सिर्फ धानी ज़मीन है जहां पर आप धान की खेती करते हैं, आप गमले में भी सब्जियों की खेती कर सकते हैं। जी हाँ, इसका इस्तेमाल न सिर्फ किसान भाई बल्कि जो दूसरे लोग हैं वो भी भलीभांति कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार सब्जियों को गमलों में उगा सकते हैं। करीब करीब सभी प्रकार की सब्जियों को गमले में उगाकर बिना जमीन घर की सब्जी की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। गृहवाटिका में अगर घर के अगल बगल ज़मीन अच्छी नहीं है या किसी वजह से वो खेती योग्य नहीं है या ज़मीन ऐसी नहीं है कि जिसमें पानी निकास की अच्छी व्यवस्था है, ऐसी परिस्थितियों में आप गमले में सब्जी उगाकर उसका उपयोग अपने इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं। किसान भाइयों, गमले में सब्जी लगाने के लिए सबसे पहले गमले के सही आकार का चुनाव करना चाहिए। गमले मिट्टी, प्लास्टिक या लकड़ी के तख्ते के हो सकते हैं। आप अपनी सुविधानुसार और उपलब्धता के अनुसार गमलों का प्रयोग कर सकते हैं। 30 घन सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा तथा इतना ही ऊंचा गमले का जो आकार होता है वो लगभग हर तरह की सब्जी उगाने के लिए पर्याप्त होता है। सब्जी के बीज या पौधे लगाने से पूर्व ये देख लें कि गमले की तली में एक छिद्र बना है या नहीं। अगर गमले की तली में छिद्र नहीं बना है तो तली के बगल में करीब आधा सेंटीमीटर गोलाई में एक छेद बना दें। उसको या तो जालीदार नायलॉन के कपड़े से या फिर कंकड़ रखकर बंद कर दें। ये छेद आप इसलिए बनाते हैं ताकि सिंचाई करते समय जो अतिरिक्त पानी है वो गमले से बाहर चला जाए और मिट्टी में ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना रहने पाएं। गमले के नीचे जो छिद्र है उसको बंद करने के बाद गमले को बलुई मिट्टी दो भाग तथा सड़ी गोबर या पत्ती की खाद का एक भाग मिलाकर अच्छी प्रकार से भर लें और ऊपर से करीब 1 इंच छोड़ दें, जिससे कि पानी सोखने में आसानी होती है। मिट्टी को अच्छी तरह से बारीक करके उससे कंकड़ पत्थर वगैरह निकाल देना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में जो खाद है वो भी मिट्टी में मिला देनी चाहिए। खाद के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी किया जा सकता है। रासायनिक उर्वरकों में नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला दें और ये काम आपको बीज की रोपाई या पौधे की रोपाई से पहले करना है। हो सके तो मिट्टी में दीमक व अन्य कीड़ों से बचाव के लिए 2 ग्राम फिरोडान या तथा उसके साथ ही 2 ग्राम थैराम या कैप्टान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पौधे में कुछ बीमारियों और रोगों से नियंत्रण हो सकता है। पौधों की अच्छी देखरेख के लिए गमले से खरपतवारों को बराबर मिट्टी की खुदाई करके

0: निकालते रहें, जिससे जड़ों को हवा भी मिलती रहेगी। इस प्रकार से गमले में आप टमाटर, मिर्च, बैंगन, गोभी, भिंडी, लोबिया तथा किसी भी सब्जी की अच्छी खेती कर सकते हैं। पौधे की बढ़वार के लिए जब भी पत्तियां थोड़ी पीली दिखाई देने लगें तो तुरंत यूरिया या किसी नाइट्रोजन वाले उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे गमलों में पौधों का भलीभांति विकास हो सके। गमले में उर्वरक कई बार में देना चाहिए। एक बार में अधिक मात्रा देने से पानी के साथ ये बहकर बाहर चली जाती है और पौधों को ये नहीं मिल पाती। अगर पौधे ज़्यादा बड़े हो गए हों तो गमले में डंडी लगाकर पौधों को सहारा देना चाहिए, जिससे कि ये पौधे गिरे नहीं और उनकी बढ़ोतरी ठीक प्रकार से होती रहे। किसान भाइयों, इस प्रकार से आप गमले में भी सब्जियों की खेती कर लाभान्वित हो सकते हैं और अपने परिवार के लिए सब्जियां उगा सकते हैं।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम एग्री टिप्स, विषय था गमले में सब्जी की खेती।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं, सुबह के 6 बजे हिंदी में और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा है कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांग पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार 3 स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी संदीप सिक्का से भी मुलाकात की। उन्होंने खुदरा निवेश बढ़ाने और भारतीय बाजारों में वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के अवसरों पर चर्चा की। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में

0: अत्यधिक तेज वर्षा के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु इसमें फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है। सोरेन जिले में चक्की मौर के निकट भूस्खलन से कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। मौसम विभाग ने बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। राज्य आपदा कार्रवाई केंद्र के अनुसार कुल्लू में सबसे अधिक 33 सड़कें बंद की गई हैं, मंडी में 27 और शिमला में 9 सड़कें अवरुद्ध हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई। वहीं महिला डबल्स में कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को 22-20, 21-14 से हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। वहीं उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार हुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्य और अमृता प्रमुरिये तुर्की के एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्टा से मुकाबला करेंगे। FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका अपने पहले मैच में इंग्लैंड से 4-0 की हार के बाद वापसी की कोशिश करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. In Jharkhand, following a 24-day protest by JPSC and JSSC aspirants, the state government has cancelled the 2024 JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency. Chief Minister Hemant Sorin announced the decision last evening after chairing a special cabinet meeting. The state government has also ordered a comprehensive probe into recruitment examinations conducted by the Jharkhand Public Service Commission or JPSC and the Jharkhand Staff Selection Commission or JSSC since 2014. However, student leader Piyush Kumar stated that the protesters' demands regarding the 11th to 13th JPSC examinations and a CBI probe are still pending. The protesting students announced they would discuss their remaining demands and decide their next course of action. Education Minister Prahlad Joshi held a meeting with the Secretary, Department of Higher Education, DG of National Testing Agency and other senior officials in New Delhi yesterday. During the meeting, the minister directed that strict compliance be ensured of the established exam protocols. He also directed that a complete overhaul of confidential operations architecture, secluded rooms, air gap systems, device deposit protocols be implemented on a war footing. The agency has been further directed to conduct a thorough audit of all exam processes and submit a report on corrective action taken. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti Network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. The security agencies launched a coordinated multi-state operation on 12th of this month using a real-time

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी जॉलीबॉय आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप और दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगा तथा ये जलयान आज ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी रानी लक्ष्मी आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा तथा यह जलयान आज ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी रंगत आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। स्वराजदीप जाने के लिए एमवी बाराटान आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा ये जलयान कल सुबह 5:30 पर स्वराजदीप से छोड़कर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा आरंभ करेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल यानी बुधवार 19 तारीख को सुबह 6 बजे स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इस जलयान की वापसी यात्रा कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराजदीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी जॉलीबॉय कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी बम्बोका कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से स्वराजदीप जाएगा तथा इस जलयान के श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा होगी कल ही सुबह 8:45 पर। एमवी रानी जंगा कल सुबह 7 बजे शहीद द्वीप स्वराजदीप स्ट्रेट आइलैंड कदम

0: अगरतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से अपनी यात्रा आरंभ करेगा और यह जलयान बृहस्पतिवार 20 तारीख को सुबह 7 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं स्थानों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। एमवी रानी लक्ष्मी कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप और दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और यह जलयान कल ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी बाराटन कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा तथा यह जलयान कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी बम्बुका कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा यह जलयान कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। स्वराज द्वीप जाने के लिए एमवी जॉली बॉय कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा यह जलयान अगले दिन यानी बृहस्पतिवार 20 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी रंगत कल सुबह 7 बजे माय बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा यह जलयान बृहस्पतिवार 20 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से चलकर माय बंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। लिटिल अंडमान की यात्रा पर एमवी भारत सीमा बृहस्पतिवार 20 तारीख को सुबह 8 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा यह जलयान उसी रोज रात 8 बजे लिटिल अंडमान से छूटकर श्री विजयपुरम वापस आएगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 6:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष।

नमस्कार दोस्तों, इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं सुनीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बातों का अक्सर हमारी जिंदगी में बहुत असर पड़ता है। बातों से रिश्ते बनते हैं, बातों से रिश्ते बिगड़ते भी हैं। प्यार भरी बात दिल जीत लेती है, सच्ची बात भरोसा बढ़ाती है। इसलिए बात हमेशा सोच कर करनी चाहिए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम साथ देना मेरा, चाहे दुनिया रूठ जाए।

0: दोस्तों, कुछ बातों का कोई जवाब नहीं होता, बस एहसास होता है। यूं ही तुम मुझसे बातें किया करो, खामोशी को भी पढ़ लिया करो। कुछ कह नहीं पाते सामने तुम्हारे, कभी मेरी आंखों से भी बात कर लिया करो।
1: यूं ही तुम मुझसे

दोस्तों, कुछ बातें दिल को छू जाती हैं और कुछ इंसान दिल में बस जाते हैं। अगर आप जैसा कोई मिल जाए जो मेरी खामोशी समझ सके तो बात बन जाए।

0: तो दोस्तों, बातों के इस सिलसिले से अब हमें दीजिए इजाजत, होगी फिर मुलाकात एक नए विषय के साथ एक नए अंदाज में। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम इंद्रधनुष। विषय था बात और प्रस्तुत कर रही थी सुनीता तिर्के। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान की 334वीं कड़ी।

श्री राम तथा रावण की सेनाएं एक दूसरे से जूझ रही हैं। एक ओर श्री राम की जय जयकार तो दूसरी ओर रावण का जय घोष गूंज रहा है। वानर और रीच महाबली राक्षसों को मारते काटते धराशायी करके उनके उदर चीर देते हैं, फिर उन्हीं के मुंडों को अस्त्र के रूप में फेंककर औरों के कपाल फोड़ देते हैं। असुरों को कुचलते मसलते वानर मेघ के समान गर्जन करते हैं, जिससे रावण के सैनिक विचलित हो जाते हैं। अपनी सेना को त्रस्त और भयभीत देखकर रावण उनका उत्साह बढ़ाने के लिए भयंकर हुंकार करता आगे आगे दौड़ता है। वानरों द्वारा फेंके गए वज्र के समान पत्थर उसके शरीर से टकराकर चूर चूर हो जाते हैं। भीषण क्रोध से कांपते हुए उसने जब वानर और भालू सेना का संहार करना प्रारंभ किया तो वे त्राही त्राही कर उठे। पूरी सेना श्री राम की शरण लेने को जैसे भाग खड़ी हुई, लेकिन सभी दिशाएं रावण के भांति भांति के अस्त्रों से आच्छादित हैं। वानर भालू भागकर जाएं भी तो किधर, लगता है वे चारों ओर से घिर गए हैं।

0: जैसे हमारा ट्रेनिंग रोज चलता है हर डे, तो मंडे जैसा हमारा कोऑर्डिनेशन, ट्यूसडे एंडोरेंस, वेनेसडे जिम, वैसे ही अलग अलग डे में हमारा अलग अलग ट्रेनिंग होता है। और हमें जो है वेनेसडे और सैटरडे को हमें शाम को इवनिंग सेशन में हमें एक्टिव रेस्ट दिया जाता है जिसमें हम अनदर गेम खेल सकते हैं, और संडे को हमें रेस्ट दिया जाता है। डेली डाइट देखा जाए तो हमारा 2 eggs, मिल्क और फ्रूट्स और चना मिलता है, और हमारा ब्रेकफास्ट अलग अलग रहता है डे बाय डे, और हमारा लंच का टाइम फिश मिलता है, और डिनर का टाइम हमें चिकन, और वेजिटेबल्स में अगर देखा जाए तो डे बाय डे वो भी अलग अलग रहते हैं।
1: अच्छा अंजनी, जब आप फुटबॉल मैच आप खेलने जाती है, आपका कुछ टूर्नामेंट होता है, तो मैच से पहले की तैयारी कैसे आप करती हैं?
0: हमारा मैच से तैयारी पहले वार्म अप किया जाता है, हमारे बॉडी को हीट किया जाता है कि हम लोग अगर मैच खेले तो इंजुरी ना हो हमें, और वो माइंडसेट रहता है कि हमें अभी अभी हम खेल रहे हैं तो हमें अपना बेस्ट देना है, हमें हार या जीत तो होते रहती है बट हमें अपना बेस्ट देना है। और हमें हम अपना किट को चेक करते हैं, जैसे हम किट जो पहनते हैं, जर्सीज, जो जर्सी नंबर है, हमारा सॉक्स हो गया, शू, फुल चेक करते कुछ खराबी तो नहीं है।
1: ये आपके मैच से पहले की तैयारी होती
0: जी
1: है। तो अंजन, ये बताइए कि एक अच्छा फुटबॉलर बनने के लिए एक प्लेयर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए?
0: सबसे पहले हम माइंडसेट होना चाहिए शुरू से लेके आप जब तक खेल रहे हो, इन फ्यूचर आप जब तक बढ़ रहे हो फुटबॉल को लेकर, और वो अपने गेम को लेकर एक प्यार होना चाहिए कि आप वो गेम खेल रहे हो और आपको आगे बढ़ना है, वो प्यार होना चाहिए आपके गेम से, तभी आप आगे बढ़ सकोगे। और मेंटली और फिजिकली आप एकदम ठीक होना चाहिए, आप सोच रहे हो और खेल भी रहे हो तो वो एक सेम में रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लोग खेल रहे हैं बट हमारा मेंटली कहीं और है, तो वो भी होना चाहिए। एक प्लेयर में एक ऐसा रहना चाहिए कि हम अभी खेल रहे हैं तो वो हम ट्रेनिंग स्किप ना करें, कोच का बात सुने, डिसिप्लिन में रहे। मेन
1: जी
0: डिसिप्लिन होता है कि हम खेल रहे तो डिसिप्लिन में रहे, और कोच का बात हमेशा सुनना चाहिए। जैसे मेरा कोच का नाम है मोहम्मद सादिक सर, तो हमेशा हम लोग को मोटिवेशन देते हैं, उनके वजह से हमें इनक्रेज होता है कि हमें आगे खेलना है। हमें सर हमेशा कभी हम डाउन फील करते तो हमें अप करवाते कि हाँ ट्रेनिंग करना है, आगे बढ़ना है, अंडमान को रिप्रेजेंट करना है।
1: एक प्लेयर में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है, मेंटली और फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है, जैसा कि आपने कहा। तो अंजनी, हमें ये बताइए कि आज के समय युवा वर्ग जो है सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, सभी युवाओं के हाथ में हम फोन देखते हैं और ज्यादा से ज्यादा वक्त वो फोन में बिताना पसंद करते हैं। तो क्या आप भी फोन यूज करती हैं? और अगर आप फोन यूज भी करती हैं तो आप साई से जुड़ी हैं, और साई में क्या होता है कि सुबह से ही आपका जो डेली रूटीन शुरू हो जाता है, आपको सुबह जल्दी उठना होता है, तो आप कैसे मैनेज करती हैं?
0: जैसे हमें सुबह ट्रेनिंग होता है तो स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया था साई, तब मुझे बहुत मैनेज करना पड़ता था क्योंकि सबको होम सिकनेस रहता है, फैमिली वाला से और मम्मी पापा से तो बात करना रहता है, तो उस टाइम हमें सिर्फ हाफ एन आवर फोन मिलता था, तो हम उसी टाइम रात को पेरेंट्स से बात करते थे, और कुछ भी अगर पढ़ाई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना है तो वही हाफ एन आवर में मैनेज करते थे।
1: अंजनी, ये बताइए कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को डिसिप्लिन होना कितना जरूरी है?
0: डिसिप्लिन एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर बहुत होना चाहिए क्योंकि वो पोटेंशियल और वो एनर्जी के साथ करना, एक डिसिप्लिन के साथ करना एक अलग होता है। अगर आप एक लेजीपन के साथ कर रहे हो तो वो एक ट्रेनिंग नहीं हुआ, आप एक डिसिप्लिन, एक पोटेंशियल, एक एनर्जी लेके ट्रेनिंग कर रहे हो। हम कैसा बिहेव कर रहे हैं ट्रेनिंग के टाइम, कैसा ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन होना चाहिए ट्रेनिंग करने टाइम।
1: अंजनी, अब तक के आपके सफर में आपके परिवार का, आपके कोच का क्या योगदान रहा? कैसे उन्होंने आपको सपोर्ट किया?
0: जैसे मेरे पेरेंट्स प्राइवेट वर्कर है तो वो कुछ भी जैसे किट वगैरह हो गया तो अभी तक से मुझे बहुत कुछ अफोर्ड करके दिया है, जितना भी मैंने पूछा है उन्होंने से, शू या मेरे फुटबॉल ग्लव्स हो गए हैं तो उन्होंने मुझे सब अफोर्ड करके दिया है, तो उनके तरफ से मेरा पूरा सपोर्ट है कि मैं आगे जाके खेलूं, और हर जगह मुझे मोटिवेशन दिया है। मैंने जहां जहां सोचा कि मैं गिव अप कर लूंगी वहां वहां मुझे मोटिवेशन दिया है, और फुल सपोर्ट है मेरे पेरेंट्स से मुझे। उनका ड्रीम है कि मैं आगे जाकर टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, इंडिया टीम में ज्वाइन हूं, और मेरे कोच हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं, और वो भी बहुत पुराने प्लेयर है, जो हमारे कोच हैं वो बहुत टैलेंटेड है, वो भी एक फुटबॉल प्लेयर रह है चुके हैं, वो हमें ट्रेनिंग देते हैं। जैसे हमारी टीम, पूरा जो टीम है, जैसे गोलकीपर अलग हो गया, डिफेंडर, मिडफील्डर, तो अलग अलग ट्रेनिंग सबको चाहिए रहता था, और हमारे पास एक ही कोच है तो वो मैनेज करते हैं सर। बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि सबको वो अच्छी तरह देखते हैं, हमारी फुल टीम को, और जैसे हम एक वुमेन्स टीम है तो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं हमें, और वो हमारी एक सेकेंड फादर की तरह है, हमें अच्छे से देखते हैं कि कुछ इंजरी हो गया या कुछ भी, और हमें अगर हम जब भी फील करते कि नहीं हो पाएगा तो सर हमें मोटिवेशन देते हैं, और सर को देख के हमें एक लगता है कि हमें करना है, हमें बढ़ना है आगे, मोटिवेशन मिलता है सर को देख के, हमें वो एनर्जी आती है अंदर से कि ट्रेनिंग करना है हमें।
1: फुटबॉल गेम के लिए आप एक दिन में कितने घंटे आप

0: प्रैक्टिस करती हैं, कितना टाइम आप देती हैं?
1: जैसे सुबह मॉर्निंग सेशन में 5:30 से 8 बज जाते हैं, तो 2 घंटे हो जाते हैं उसमें, 2 या 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है। और इवनिंग सेशन में 3:30 से लेके 5:30 6 हो जाता है, तो वो भी 2 घंटा कवर कर लेते हैं।
0: भविष्य में आप फुटबॉल के क्षेत्र में अपने आप को कहाँ देखती है?
1: इन फ्यूचर मैं चाहती हूँ, मेरा ड्रीम है कि मैं इंडिया टीम में सेलेक्शन हूँ मेरा, और मैं एक बेस्ट गोलकीपर बनूँ, और आगे जाके मैं अपने अंडमान और इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ आगे जाके इन फ्यूचर।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। हमें आशा है कि भविष्य में हम आपको एक उभरते हुए फुटबॉलर के रूप जरूर देखेंगे। अंजनी, आप फुटबॉल प्रैक्टिस करती हैं, आप 12वीं क्लास में हैं, 12वीं क्लास की पढ़ाई आप कर रही हैं, कितना कुछ आपको रहता है करने के लिए। ऐसे समय में जब समय मिलता है, आप अपना मनपसंद कुछ करती हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं?
1: जैसे हॉबीज तो वैसे मैं ज्यादातर डांस वगैरह करती हूँ, और जैसे मेरे फ्रेंड्स जो है फ्री टाइम में कभी कभी हम लोग मिलके गाना गाते हैं बैठ के।
0: अच्छा,
1: एक मेरी फ्रेंड है जो गिटार बजाती है, हम लोग सब मिलके एक रूम में बैठ के गाना गाते हैं कभी कभी, और कभी कभी गेम्स खेलते हैं, फन गेम हो गया जैसा, वैसे टीम के जो मेंबर्स है उसके साथ मिलके टाइम स्पेंड करते हैं ज्यादातर टाइम।
0: तो आप कार्यक्रम के अंत में जो आपके साथी आपको सुन रहे हैं, जो यूथ्स आपको सुन रहे हैं और जो फुटबॉलर बनना चाहते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं ये बोलना चाहूंगी कि अपना माइंडसेट सही जगह रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। अगर मेंटली आप गलत सोच रहे हो तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमारा माइंडसेट ही सब कुछ है कि हम क्या कर रहे हैं, आगे क्या करना है, और उतना इंटरनेट से इंक्लूड नहीं होना है, क्योंकि आजकल के जमाने में ये होता है कि इंटरनेट से ज्यादा मिलते हैं हम लोग, और हम लोग खेलना ये सबसे नहीं हो पाता है हमें। तो अगर हमें एक अच्छा फुटबॉलर बनना है आगे जाके, या कोई प्लेयर बनना है, तो हमें उस चीज में मेहनत करना होगा और हार्डवर्क करना पड़ेगा आगे जाके।
0: अंजनी, आप आज कार्यक्रम में आई और फुटबॉल के प्रति जो आपका जुनून है, उत्सुकता है, वो देखकर हमें ये लगता है कि भविष्य में आप एक उभरती हुई फुटबॉलर जरूर बनेगी। अपने कठिन परिश्रम से हमारे द्वीपों और देश का नाम रोशन करेगी। आप कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

श्रोताओं, खेल जगत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप एक उभरते युवा फुटबॉल खिलाड़ी अंजनी नायक से ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट कर रही थी हेमलता। और अब दोस्तों, कार्यक्रम का रुख करते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, आप बने रहे हमारे साथ।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: Tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations. Your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
1: अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। और अब लीजिए सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में राज फिल्म का ये गाना। गीतकार समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

एक्शन रिप्ले इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना दलेर मेहंदी और ऋचा शर्मा की आवाज़ों में, इरशाद कामिल के बोल थे व प्रीतम का संगीत। और अब इसी के साथ ही गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
1: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए, जो हमें जानकारी डिटेल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद जेएससी सीजीएल के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है।

0: और इसे अमरीका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने ये सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमरीका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमरीकी कांग्रेस से सेव गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। यह प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
1: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम और माहे में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा जारी है। राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर बहुत तेज बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रूपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आंध्र प्रदेश के डॉक्टर BR अंबेडकर कोनासीमा जिले से मछुआरों

0: को ले जा रही मछली पकड़ने की एक नौका समुद्र में लापता हो गई है। ये मछुआरे इस महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था। उनके वापस न लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारियों को सूचना दी। तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। केरलम में विझिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन आज इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।
1: विझिंझम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंझम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे और आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
2: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी चीन के शी यू की को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेस को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल में भारत की जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में ये जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा और झारखंड में छात्र आंदोलन के असर के समाचार छाए हुए हैं। पंजाब केसरी के मुख्य पृष्ठ पर पहला समाचार है, अब नितिन की नवीन टीम। पत्र ने उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, महासचिव स्मृति ईरानी और कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल के चित्र भी सबसे ऊपर प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, भाजपा की नवीन टीम, 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक और 6 नए महासचिव। जनसत्ता में इस समाचार की सुर्खी है, माधव और ईरानी की वापसी, अमित मालवीय की हुई छुट्टी। हिंदुस्तान का शीर्ष समाचार है, टीम नवीन में जोश होश का मेल। नवभारत टाइम्स ने झारखंड के घटनाक्रम को पहला समाचार बनाया है, कई फजीहतों के बाद NTA ने बदली अपनी टीम, 600 एक्सपर्ट्स हटाए। पत्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को बॉक्स प्रकाशित करते हुए आंदोलनरत छात्रों की तस्वीर भी प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र सहित इस खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड आउटसोर्स एजेंसी की 2014 से अब तक कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। राजस्थान पत्रिका ने रेल यात्रियों की सुविधाओं की उपेक्षा और अनदेखी को संपादकीय का विशेष बनाया है। पत्र कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं। सवाल सिर्फ पानी के पीने का साफ होने का नहीं है, यात्रियों की दूसरी सुविधाओं की भी समयबद्ध जांच और सतत निगरानी करनी चाहिए, चूंकि यात्री सुविधाओं

0: भी अनदेखी चिंताजनक है। लोकसत्ता ने नागपंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर उज्जैन में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़ का समाचार अपने पहले पृष्ठ पर रखते हुए बिहार के लखीसराय में मची भगदड़ में 7 दर्शनार्थियों की मौत का समाचार भी बॉक्स में प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में विद्यार्थियों के जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यू को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। झारखंड गवर्नमेंट कैंसल्स जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन आफ्टर 24-डे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट। ऑल्सो कैंसल्स ऑल अदर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द प्राइवेट एजेंसी टीडीपीएल। US President Donald Trump praises India's voter ID system, hails it as a model for stricter US election rules. India to host 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today. Indian Army Chief General Dhiraj Seth conferred rank of Honorary General of Nepal Army by President Ramchandra Podel in Kathmandu. IMD issues red alert for a very heavy rainfall in Jharkhand today, and Ayush Shetty stuns world number one and defending champion Shi Yu Qi in first round of men's singles at BWF Badminton World Championships in New Delhi. And now the news in detail. Jharkhand government has cancelled JSSC CGL examination after 24-day students' protest in the state. It has also cancelled all other recruitment exams conducted by the private agency TDPL. The announcement triggered celebrations at the protest site in Ranchi, though the demand for a CBI probe remains unresolved. We have a report.
3: The Jharkhand government has decided to cancel the JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency, besides announcing a probe into recruitment examinations conducted by JPSC and JSSC since 2014. The decision was taken at a special cabinet meeting chaired by Chief Minister Hemant Soren and was welcomed by protesting students at the Jaipal Singh Munda Stadium, who celebrated by distributing sweets and applying gulal. The government has also decided to investigate recruitment processes conducted by JPSC and JSSC from 2014 onwards and constitute a committee headed by IAS officer Amitabh Kaushal to recommend reforms in the examination system. Meanwhile, Minister Deepika Pandey Singh and Health Minister Irfan Ansari along with MLA Jairam Kumar visited Sadar Hospital and ended the hunger strike of Devendranath Mehto and other protesting students by offering them juice. Devendranath Mehto thanked the government and said the decision addressed major demands with the JPSC JSSC Nyay Manch announcing that it was suspending its agitation for now. Student leader Ravindra Paswan thanked the government for the decision but said the Reform Manch would continue its agitation until a CBI probe is ordered into the alleged irregularities. The government's decision has also triggered protests among candidates already appointed through the JSSC CGL examination, with several selected candidates gathering outside Project Bhavan in Ranchi and expressing concerns over their jobs in future. The Reform Manch is expected to announce its detailed position and future course of action today, particularly on the demand for a CBI probe. Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
2: US President Donald Trump has praised India's voter ID card system and hailed it as a model for stricter US election rules. He cited India's electoral system as an example of election security while renewing his call for stricter voter identification requirements in the United States. We have a report.
4: In a social media post, Mr.

अभी आप प्रणति देवी को सुन रहे थे। श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आपको सुनवा रहे हैं कुमार शानू की आवाज़ में ये गज़ल।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 9 बजे हैं और अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुर्बानी फिल्म से कंचन और मनहर उदास की आवाज़ों में। इंदिवर के बोल है व कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में तैयार कैफ़े आज़मी का गाना आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम अनुपमा। लता मंगेशकर के स्वर में।

0: श्रोताओं, तराने सुहाने कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूँ, आखिर मेरी भी कोई अहमियत है। लोग सोचते हैं कि मैं मच्छर के काटने से फैल जाता हूँ। अरे भाई, मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया हो सकता है, मैं नहीं। कोई कहता है कि एक ही टॉयलेट का इस्तेमाल करने से, कपड़े या तौलिया साझा करने से, या फिर HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ खाने पीने, उठने बैठने, पढ़ने काम करने से, बात करने से फैल जाता हूँ। अरे नहीं भाई, मेरे बारे में ठीक से तो जान लो, मैं इन सब चीजों से नहीं फैलता। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
0: अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम तराने सुहाने में, और अब का शामिल कर रहे हैं खामोशी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार के बोल हैं व हेमंत कुमार का संगीत।

श्रोताओं, लता मंगेशकर और साथियों के गाए राहगीर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने अब यहीं समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हे, स्टिल स्टक ऑन ओल्ड कार? स्विच टू स्मार्टर फ्यूल विद मोर सेविंग्स विद विक्टोरियस SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के तहत सुनिए पंडित भजन सोपोरी का कर्नाटक शैली में संतूर वादन। इनके साथ पखावज पर संगति दी है दालचंद शर्मा ने। तो आइए सुनते हैं पंडित भजन सोपोरी का संतूर पर बजाया राग नट भैरव, जो सूल ताल में निबद्ध है।

श्रोताओं, अभी आप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के तहत पंडित भजन सोपोरी का कर्नाटक शैली में संतूर वादन सुन रहे थे। इनके साथ पखावज पर संगति की थी दालचंद शर्मा ने। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओं, अब आनंद लीजिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल।

कार्यक्रम का शुरुआत करते हुए आइए सुनते हैं लुटेरा फिल्म का यह गीत, जिसे गाया है मोनाली ठाकुर ने। गीतकार है अमिताभ भट्टाचार्य और इस गीत को शुरू में पिरोया है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोताओं, आप सुनिए निखिल डिसूजा, सुखविंदर सिंह, श्रुति हसन और लॉय मेंडोंसा के आवाज़ों में डी डे फिल्म का यह गीत। गीतकार हैं निरंजन अयंगर और संगीत दिए हैं शंकर ईशान लॉय ने।

0: लीजिए सुनिए गीतकार कुमार के लिखे इस गीत को, जिसे शुरू में पिरोया है सचिन गुप्ता ने, आवाज़ दिए हैं पंजाबी एमसी और मनाके ने। फिल्म का नाम है मेरे डैड की मारुति।
1: Change the track, turn up the sound.

अब सुनते हैं बॉयज़ तो बॉयज़ है फिल्म के इस गीत को, जिसे आवाज़ दिए हैं मोहित चौहान और सैंती ने। गीतकार हैं पंछी जलोनवी और संगीत दिए हैं शैलेंद्र शैलेंद्र और सैंती ने।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को, जिसे शुरू में पिरोया है विशाल और शेखर ने। गायक कलाकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और अनुषा मनी। फिल्म का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस।

लीजिए सुनिए विपिन पटवा के संगीत निर्देशन में लव यू सोनियो फिल्म के इस गीत को, गीतकार हैं डॉक्टर सागर तथा गायक कलाकार हैं के और अन्वेषा सरकार।

0: श्रोताओं, अब लेते हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल।
1: Some cars are designed to blend in, others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0 liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV inspired design, already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just rupees 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now. Nexa.
0: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। अब सुनिए रब्बा मैं क्या करूँ फिल्म के इस गीत को। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, गायक कलाकार हैं राज पंडित, विधि शर्मा और बीनी दयाल, तथा धुन बनाई है सलील सुलेमान ने।

0: श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं जावेद बाशी बशीर के गाए इस गीत को। गीतकार हैं रजत अरोरा। फिल्म का नाम है वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा। इस गीत को शुरू में पिरोया है प्रीतम ने।
1: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना

लीजिए अब सुनिए प्रसून जोशी के लिखे इस गीत को। संगीतकार हैं आदेश श्रीवास्तव, फिल्म का नाम है सत्याग्रह और गायक कलाकार हैं शावकत अमानत अली और अर्पिता चक्रवर्ती।

श्रोताओं, अब सुनते हैं मद्रास कैफे फिल्म के इस गीत को, जिसे गाया है जेबुन निसा बुनगश ने। बिलाल सामी ने बोल लिखे हैं तथा संगीत दिए हैं शांतनु मोइत्रा ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनते हैं ग्रैंड मस्ती फिल्म से, जिसे गाया है संजीव राठौड़ और दर्शन राठौड़ ने, गीतकार हैं कुमार

श्रोताओं, अभी आपने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल का लुफ्त उठाया। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1352वीं कड़ी।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं शुद्ध विचार।

0: शुद्धाचरण और शुद्ध मन ही सच्चे सुख का आधार है। मन की शुद्धता ही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
0: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: और धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषी, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
0: एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, राजाजी नगर, बेंगलोर से।
1: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
0: सभी श्रोताओं को हमारा आभार संदेश भेजने के लिए।
1: तो श्रोताओं एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
0: जी
1: श्रोताओं आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर। तो विमलेश जी जरा आज का विषय तो बताइए।
0: अजीत जी आज हम बात करेंगे हमारी भाषा हिंदी के बारे में और जानेंगे कि इसका प्रकाश कैसे जगह जगह फैल रहा है और दुनिया की दूसरी भाषाओं पर किस तरह इसका प्रभाव पड़ रहा है।
1: जी हाँ श्रोताओं आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचे हमारी प्यारी हिंदी भाषा के शब्द।
0: जी
1: यानी किस तरह दूसरी भाषाओं ने हमारी भाषा के कुछ शब्दों को अपना लिया। तो विमलेश जी आपसे करें शुरुआत।
0: जी जरूर। तो अजीत जी पहला शब्द है जंगल। देखिए जब हम जंगल शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने घने पेड़, जंगली जानवर और प्रकृति का विशाल संसार नजर आता है, आता है ना?
1: जी।
0: लेकिन क्या आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाला जंगल शब्द भारत की ही देन है।
1: श्रोताओं आपको बता दें कि यह शब्द संस्कृत के जंगल से विकसित होकर हिंदी में आया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका प्रयोग वन प्रदेश या निर्जन भूभाग के लिए मिलता है।
0: जी।
1: हुआ ये कि जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ के विशाल वनों के लिए स्थानीय लोगों से यही शब्द सुना।
0: जी।
1: और इसे अंग्रेजी में जंगल के रूप में अपना लिया, है ना मजेदार बात?
0: हाँ बिल्कुल वही जंगल, JUNGLE।
1: जी।
0: तो अजीत जी आज दुनिया के किसी भी देश में यदि अमेज़न के वर्षा वनों, अफ्रीका के घने जंगलों या एशिया के वन क्षेत्रों की बात होती है या विशेषकर बच्चों की कहानियों की बात होती है, अजीत जी एक और बात, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे शब्दकोश भी जंगल शब्द की भारतीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं।
1: तो विमलेश जी अब जानते हैं एक और शब्द के बारे में।
0: जी।
1: वो शब्द है शैम्पू। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो शैम्पू शब्द से परिचित ना हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शब्द की जड़ें भी भारत में हैं।
0: वाह ये तो बड़ी नई और रोचक बात है।
1: जी विमलेश जी ये शब्द उर्दू के चांपो या बोलचाल वाली हिंदी भाषा के चंपी शब्द से निकला है। चांपो का अर्थ है सर दबाना या मालिश करना। भारत में सिर पर तेल लगाकर मालिश करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
0: जी बिल्कुल 18वीं शताब्दी में अंग्रेज अधिकारी भारत में सिर की मालिश करवाने लगे थे। उन्हें ये अनुभव इतना अच्छा लगा कि वे इस परंपरा को अपने देश ले गए। उन्होंने चांपो शब्द को अंग्रेजी उच्चारण के अनुसार शैम्पू में बदल दिया। श्रोताओ शुरुआत में शैम्पू का अर्थ विदेश में केवल सिर की मालिश करना ही था,
1: लेकिन बाद में जब बाल साफ करने वाले विशेष द्रव बनने लगे तो धीरे धीरे उनका नाम भी शैम्पू पड़ गया।
0: जी
1: आज ये शब्द दुनिया की लगभग हर भाषा में प्रचलित है।
0: जी
1: तो विमलेश जी ऐसी जानकारी से सचमुच एक सुखद आश्चर्य होता है ना, और ये भी पता चलता है कि भाषाएं किस प्रकार एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं।
0: जी अजीत जी एक और शब्द है जिसे अंग्रेजी भाषा ने बड़ी खुशी से अपनाया है, वो शब्द है पायजामा। ये शब्द भी भारत की ही देन है। ये हिंदी उर्दू के उपयोग में लाए जाने वाला शब्द पायजामा से आया है। ये शब्द निर्माण की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाय अर्थात पैर और जामा अर्थात वस्त्र, यानी पैरों में पहनने वाला वस्त्र।
1: जी श्रोताओ ब्रिटिश अधिकारी भारत में रहते समय इस ढीले और आरामदायक पहनावे से बहुत प्रभावित हुए।
0: जी
1: वे इतने प्रभावित हुए कि वे इसे इंग्लैंड ले गए और अंग्रेजी में इसका उच्चारण पजामाज हो गया। आज दुनिया के लगभग हर देश में रात के आरामदायक वस्त्र के लिए यही शब्द प्रयोग में लाया जाता है।
0: तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की जानकारी कुछ प्रसिद्ध शब्दों के बारे में जो हिंदी उर्दू या संस्कृत के हैं, लेकिन अब अंग्रेजी के साथ साथ और भी कई विदेशी भाषाओं में घुल मिल गए हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: तो श्रोताओ आज का प्रश्न है कि किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है।
0: जी
1: इसका हिंट है विमलेश जी, जरा इसका हिंट दे दें।
0: इसका संबंध खानपान से है।
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: किसी दक्षिणी भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है। इसका हिंट है
1: इसका संबंध खानपान से है। श्रोताओ आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे

0: ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: अश्रोता, इन्हीं पुस्तकों को अगर आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। आप इस चैनल पर जाकर हमारे कार्यक्रमों को या हमारे ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम पंडित बिरजू महाराज।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज के जीवन और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के बारे में उनके ही साक्षात्कार द्वारा बताया गया है।
0: पंडित बिरजू महाराज।

0: भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की भिन्न भिन्न संस्कृति, भाषा, धर्म, कला और रोचक परंपराएं इसे अनूठा और अद्वितीय देश बनाती हैं। जहां तक नृत्य कलाओं की बात है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां इतनी नृत्य कलाएं हैं।
1: भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिशी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से जाने जाते हैं।
0: आज हम बात करेंगे महान कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज की। वर्ष था सन 1958, स्थान कलकत्ता का नाट्य रंगमंच। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी विलक्षण नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर सबको मानो सम्मोहित सा कर दिया था। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। यही बृजमोहन नाम आगे चलकर बिरजू के जनप्रिय नाम से जाना जाने लगा। 4 फरवरी सन 1938 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका जन्म हुआ था।
2: सरिया खेलते हैं किसन रामा, दूसरे पिसन रामा, तीसरे।
0: उनके जन्म के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है।
1: कहते हैं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उस दिन अस्पताल में उन्हें छोड़कर सारी कन्याओं का जन्म हुआ था। इसी वजह से उनका नाम बृजमोहन रखा गया था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था। उन्हें अच्छन महाराज भी कहा जाता था। वो रायगढ़ रजवाड़े में दरबारी नर्तक हुआ करते थे।
0: राज दरबार में नर्तक होने के कारण परिवार में किसी बात की कमी ना थी। बचपन से ही उन्हें कला, संगीत और नृत्य का वातावरण मिला। 5 की आयु में ही उन्होंने तबला और हारमोनियम बजाना सीख लिया था। वो घर और दरबार के नृत्य को देख देख कर 7 की आयु में नृत्य करना भी सीख गए थे।
1: एक दिन जब बिरजू नृत्य का अभ्यास कर रहे थे तो उनके पिताजी कमरे में आए।
3: प्रणाम पिताजी।
4: जीते रहो बेटा बिरजू। बेटा, तुमने नृत्य का बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया है। आज तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया। लेकिन
3: लेकिन क्या पिताजी?
4: बेटा, कहते हैं ना, कोई भी कला तब तक अधूरी ही रहती है जब तक गुरु का आशीर्वाद और तालीम ना हो।
3: जी पिताजी, मेरे गुरु तो आप ही हैं और मेरे चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज।
4: तो अपनी कला को संपूर्ण कब करोगे, यानी तालीम कब लोगे?
3: जब आप कहें। आपसे दीक्षा ग्रहण करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा।
4: लेकिन

0: भेंट लिए बिना गंडा नहीं बांधूंगा।
1: जी, जैसी आपकी आज्ञा।
0: जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो।
1: जी पिताजी।
2: कथक नृत्य की प्राचीन परंपरा रही है कि तालीम शुरू करने से पहले गुरु शिष्यों को गंडा बांधते थे और शिष्य गुरु को दक्षिणा या भेंट देते थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। गंडा गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र रिश्ता होता है। गुरु के बांधे हुए गंडे को शिष्य अक्सर आजीवन धारण करते हैं।
3: तब उन्होंने अपने शिष्य बिरजू को गंडा बांधा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर पर गरीबी छा गई। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा किए थे, आइए सुनते हैं।
4: पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कृष्ण से जुड़ा नृत्य है कथक, जिसमें आप पारंगत भी हैं और कई दशकों से आप इस नृत्य की खिदमत कर रहे हैं। विरासत में मिला आपको ये नृत्य। अगर हम आपके शुरुआती दिनों की तरफ चलें, बहुत कम लोग आपके उन दिनों के बारे में जानते हैं और ख़ासकर आपके घराने के बारे में। कैसे शुरुआत हुई?
5: हमारे पर बाबा दुर्गा प्रसाद जी, ठाकुर प्रसाद जी, उससे पहले भी नृत्य रहा है और हम लोग हड़िया से निकले हुए लोग, 900 निवासी घर थे वहाँ पर। नवाब वाहिद अली शाह ने जब बुला लिया हम लोगों को वहाँ लखनऊ में, तो राज दरबार में पूरी इज्जत, पालकी भेजना, सिपाही भेजना, बाबा को सवार करके ले जाना, तो ये सब कहानियाँ अम्मा बताती थी। जैसे हमारे अच्छन महाराज मेरे पिताजी रहे, मैं छोटा था तो वो खील बताशा जेब में पड़ा और तालीम खाने में जाके बैठा हूँ, सब लोग रियाज कर रहे हैं, तो मैं देख के तबले पे कभी हाथ मारूँ, कभी वो हारमोनियम पकड़ लूँ। फिर अम्मा को आके मैं रसोई में बताऊँ कि अम्मा मुझे भी आता, तो उस वक्त ये उंगलियाँ भी मुझे नहीं आती थी कहाँ से ये बांध के, तो मैं गिर पड़ता था। तो अम्मा कहें अभी गिर जाते हो, तुम बड़े हो जाओ तो ठीक से नाचना। तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर रहा कि मेरे बाबा पिताजी सबका नाम इतना रहा, तो मैं भी कोशिश करूँगा उस तरह से बढ़ने की कोशिश करूँगा।
4: अगर आपके उन संघर्ष के दिनों की हम बात करें, उस संघर्ष के दिन कैसे थे आपके?
5: मेरे ख्याल से एक समय तो हमारे घर में चार चार घोड़े, बग्घी, टमटम सबके नाम से, चाचा जी के नाम से बाबू, पर धीरे धीरे वो छीन होते होते, कहते ना एक दफ़ा तो आदमी उरूज नाम पकड़ता है, अभी धीरे धीरे सब चीज़ ख़त्म होने लगती है। और यहाँ तक हुआ कि कर्जदार हो गए हम लोग घर में। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊँगा पर मैं रियाज करूँगा। पर अम्मा का आशीर्वाद और पिताजी का आशीर्वाद, तो बचपन में ही उन्होंने एक अम्मा को एक लफ्ज़ कहा था। अम्मा कहती थी बेटे को साथ ले जाओ, थोड़ा देखेगा समझेगा। तो कहे अम्मा ये परेशान करता है, कभी वो गुब्बारे मांगता है, कभी वो चॉकलेट मांगता है, तो बेहतर होगा कि मैं सिखा दूँ घर की विद्या है। तो मैं 7.5 साल की उम्र में मैं उनसे गंडा बंधवाया और वो भी मैंने 500 इकट्ठा किए थे, 25 रुपये 50 रुपये करके इनाम पाके। तो मैंने कहा बाबू, मैं अम्मा ने कहा भाई आज शागिरद कर लो। अम्मा कह लेगा मुझे मालूम तुम्हारा लड़का अमीर हो गया है, 501 रुपये दे दिए और एक पैसा ना मुझे दिया ना अम्मा को दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। तो क्या करें करें, अब इसमें से नहीं दूंगा, ये मेरा नजराना है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरे बाबू ने मुझे गंडा बांधा, उनका आशीर्वाद। और मेरे दिमाग में हरदम जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, मेकअप किया, कॉस्ट्यूम पहना, उस वक्त चाचा और बाबू हमारे सामने होते एकदम, और ईश्वर की कृपा होती है। मैं कहता हूँ प्रभु मैं तैयार हो गया हूँ, दुल्हन बन गया हूँ, तुम अब नाचो आके मेरे बदन में तुम्हारे, क्योंकि तुमने मेरे बदन को पसंद किया है, तुम नाचो हम देखेंगे। ये मेरा
4: बहुत सुंदर बात। आपके बारे में हम सभी जानते हैं कि आप शास्त्रीय गीत संगीत में माहिर हैं, वाद्य यंत्रों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, और एक ख़ास बात जो ये कि आप छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हैं, वो जो बिल्कुल अभी 4 साल 5 साल की उम्र के हैं, उन्हें कैसे समझा पाते हैं इन सब चीज़ों को?
5: अरे उनको बड़े मज़े में समझाता हूँ। तो एक मैंने अपने भतीजी को एक तिहाई बताई, तरथेई ताथेई ता ऐसे करके, तो कह इसमें तो बहुत सा तरथेई है, कैसे याद करूँ? तो मैंने कहा बेटा सब्जी खाते हो? कहना हाँ खाते हैं। पूड़ी खाती हूँ? हाँ खाते हैं। तो
6: सब्जी पूड़ी, वाह वाह, तो सब्जी 3 मात्रा, पूड़ी 2 मात्रा, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी

0: फिर आखिर में तो मीठा चाहिए, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे। वाह वाह वाह, तो वाह वाह, सब्जी पूरी और कचौड़ी, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे।
1: बहुत सुंदर महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
2: साथियों, बिरजू महाराज ने कथक नृत्य में कई योगदान दिए। उन्होंने लखनऊ घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया, नृत्य में नए आयाम जोड़े और देश विदेश में अपने शानदार नृत्य प्रदर्शन के द्वारा भारतीय कला विरासत के प्रति विश्व भर में सम्मान का भाव उत्पन्न किया।
3: बिरजू महाराज को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं।
2: सत्रह जनवरी 2022 को नई दिल्ली में इस महान कलाकार का देहावसान हो गया। उनकी आयु 83 वर्ष थी। उनके निधन से भारत के कला जगत को एक बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उनकी महान विरासत हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।
4: पंडित बिरजू महाराज, कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज, बाबला कोचर, अरशद अहमद खान और सुनील लोहिया, नाट्य आलेख अजीत होरो, संपादन जगबंधु जाना, निर्माण विमलेश चौधरी, विशेष आभार राज्यसभा टीवी तथा प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम बिरजू महाराज।
5: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
6: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
5: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
7: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
4: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
8: इस कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद भगत सिंह के जीवन और देश की बलिवेदी पर उनकी शहादत के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
4: भगत सिंह।
9: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
10: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
9: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
11: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने

0: वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
1: कौन है?
2: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहां आंगन में बैठी क्या कर रही है?
1: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहां चले गए थे तुम?
2: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
1: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
2: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख,
1: ये इस शीशी में क्या है?
2: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
1: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
2: मैं इसकी पूजा किया करूंगा अमरो। ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
1: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
2: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।
3: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
0: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
2: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
4: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
2: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुपरिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
3: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया।

0: उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
1: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
2: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग
5: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1-to-3-minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
6: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1352वीं कड़ी।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। 11:30 हुए हैं। अब आनंद लीजिए चित्रगीत कार्यक्रम का। कार्यक्रम का शुरुआत करते हुए सुनते हैं पहला गीत फिल्म देवदास से, जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने और बोल लिखे हैं नुसरत बत्र ने और संगीत दिए हैं इस्माइल दरबार ने।

श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं ए हरिहरन और लता मंगेशकर के आवाज़ों में लम्हे फिल्म का यह गीत। गीतकार है आनंद बख्शी तथा इस गीत को सुरों में पिरोया है शिव हरि ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में लेते हैं अब एक छोटा सा अंतराल।
1: डू यू प्ले फॉर द रश और डू यू प्ले इट स्मूथ? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting turbo booster jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of Rs. 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
0: Yeah. आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रगीत। चलिए अब सुनते हैं रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन और उन्हीं के लिखे बोल में हीना फिल्म का यह गीत। इसके गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर, मोहम्मद सईद, फरीद सबरी, सतीश और साथी।

श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और बाबला की आवाज़ों में चांदनी फिल्म का यह गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और शिव हरि ने धुन तैयार की है।

श्रोताओ, कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं हीर रांझा फिल्म की इस गीत को। इसके गायक कलाकार है लता मंगेशकर और अनवर ने बोल लिखे हैं आनंद और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, तथा इस गीत को सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे तेलुगु कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെഡ്സിൽ ഇത് ആകാശവാണിയുടെ ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। अब से कुछ ही देर बाद 1 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे दिल्ली से समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। बारहवां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडप में चल रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और विशेषज्ञ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आम सहमति बनाना और पर्यावरण के क्षेत्र को मजबूत करना है। श्री यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे सहयोग को और मजबूत करने तथा पर्यावरण कार्य समूह के लिए सकारात्मक परिणामों हेतु सार्थक तरीके से जुड़ने को उत्सुक हैं। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवा संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक

0: करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाश अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिव शंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। भारत और श्रीलंका के बीच गॉल्फ में खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 5 विकेट पर 123 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को पहली पारी में 284 रन पर ऑल आउट कर दिया। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महिला सिंगल्स के पहले दौर में भारत की उन्नति हुडा और म्यांमा की थेत हतार थुजार के बीच मुकाबला जारी है। भारतीय खिलाड़ी ने कुछ देर पहले ही पहला गेम 22-20 से जीत लिया है। लक्ष्य सेन आज शाम पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। मिक्स डबल्स के पहले दौर में भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे को कनाडा की जोड़ी जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई से हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The 12th BRICS Environment Ministers meeting is underway at Bharat Mandapam in New Delhi. The meeting serves as a platform for ministers, senior officers, policymakers and experts from the member countries to engage in substantive discussions, foster consensus and strengthen environmental cooperation. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, is presiding over the meeting. In a social media post, Mr. Yadav said he is looking forward to further strengthening cooperation and engaging in a meaningful manner for positive outcomes. For the Environment Working Group, the theme of India's BRICS Chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The Jharkhand government has cancelled the JSSC CG.

श्रोताओ, अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत रूना लैला के गाए गीतों का लुत्फ उठा रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओ, अपने पसंदीदा फिल्मी गीत सुनने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, पता, गाने के बोल, फिल्म का नाम लिखकर पैगाम भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर सुने, 9474234000। अब आइए लेते हैं हमारा पहला पैगाम, जिसे भेजा है जलंधर से हमारे श्रोता संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत और भरत मक्कड़ ने। ये सुनना चाहते हैं कुछ कुछ होता है फिल्म का यह गीत, जिसे आवाज़ दिया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

श्रोताओं, अब लेते हैं अगला पैगाम जिसे भेजा है कनीषा ने। ये 11 चरमा अंडमान से है। ये सुनना चाहती है ममता फिल्म का यह गाना।

श्रोताओ, अब लेते हैं अगला पैगाम जिसे भेजा है कनीषा ने। ये 11 चरमा अंडमान से है। ये सुनना चाहती है ममता फिल्म का यह गाना जिसके गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर।

गीत को सुनने के लिए अगला पैगाम भेजा है ऑस्टिनाबाद से शांति कुमारी लकरानी। इस गीत के गीतकार हैं विशाल डडलानी तथा आवाज़ दिए हैं राहत फतेह अली खान ने।

अगला पैगाम भेजा है गांव टोरोवाल जिला नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी ने। ये सुनना चाहते हैं लोफर फिल्म के इस गीत को।

0: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओं, आप भी अपने पसंदीदा फिल्मी गीत सुनने के लिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, पता, गाने की बोल, फिल्म का नाम लिखकर पैगाम भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9474234000। तो श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम का अंतिम पैगाम हम लेते हैं, जिन्होंने भेजा है मध्य प्रदेश से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक ने ये सुनना चाहते हैं सरगम फिल्म का ये गीत, जिसे गाए हैं मोहम्मद रफ़ी ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 2 बज चुके हैं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। ट्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा म्यांमार की थेत हतार थुजार को हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए सतत पर्यावरण के निर्माण की दिशा में नीति

0: प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 और 2022 के बीच प्रदूषण उत्सर्जन की तीव्रता में 37% से अधिक की कमी की है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक स्वतंत्र, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण तथा योगदान को बेहद महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा करना बंद कर देना चाहिए।
2: 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया? तिरंगा हो, जनगणमन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाए।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए थे तब भी पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पूर्वोत्तर को भारत का विकास इंजन बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इस क्षेत्र को एकीकृत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के करीब लाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC CGL परीक्षा 2024 और TDPL एजेंसी द्वारा संचालित

0: भी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
1: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए, जो हमें जानकारी मटेरियल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बुझने के बाद कैबिनेट ने जैसे सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर लंबे परांग ला दर्रे से होकर गुजरेगा, जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। तीनों सेनाओं के महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। श्री सिंह ने कहा कि ऊंचाई वाले इस अभियान में युवा बालिकाओं की भागीदारी देश की महिलाओं के साहस, दृढ़ संकल्प और बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवां संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केरलम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है। ये इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विझिंजम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज के 2 कंटेनर को रवाना किया।
2: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विझिंजम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि युद्ध की बदलती प्रकृति ने सशस्त्र बलों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और एकीकृत करने को अनिवार्य बना दिया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने निगरानी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पर भारतीय सैन्य समीक्षा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विशेषकर 2020 के बाद से युद्ध में तीव्र और व्यापक परिवर्तन आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाज

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाज

0: जिसका असर आगामी दो दिनों तक झारखंड में रहने की उम्मीद है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: इस बीच मौसम विभाग ने

0: बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिन में उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर भारत में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केरल और माही में आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसाइया अरुमनैया गम को अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमा की थेत हतारथुजार को सीधे सेटों में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अगले दौर में उनका मुकाबला कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिशेल ली से होगा। इस बीच मिक्स्ड डबल्स स्पर्धा में भारतीय जोड़ी आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तथा तुर्की की जोड़ी एमरे सोनमेज और यासेमेन बेक्तास के बीच मैच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया है। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 77,374 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की गिरावट के साथ 24,206 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। त्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: सी किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक दो स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और गरज के साथ बौछारें तथा बिजली गिरने की संभावना है। यह थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:32 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार। Life is moving in fast mode.

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से, और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: Non-stop music.

0: फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक। इस कार्यक्रम के तहत आपने सुना इन फिल्मों के गीत। आशिक बनाया आपने आशिक, शहीद भगत सिंह, सुल्तान, फिर हेरा फेरी, हीरा पन्ना, पड़ोसन, प्यासा और घर। हंड्रेड पॉइंट नाइन मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं अब सुनिए कार्यक्रम यू ही गाते रहो।

श्रोताओं, मन एक ऐसा चीज है जिसे आज तक ना कोई बांध पाया है और ना ही कभी बांध पाएगा। मन तो आज़ाद पंछी की तरह उड़ना पसंद करता है। इसे अपने हिस्से में बांधना मुश्किल है। हमारा मन कभी इधर चला जाता है तो कभी उधर चला जाता है।

श्रोताओं, कहते हैं कि जिनका मन काबू में नहीं रहता उनका अक्सर दिल पर से भी काबू हट जाता है। जिसे भुलाना हो वही बार बार याद आ जाता है।

श्रोताओं, मन और प्रेम का संबंध अटूट होता है। मन ही होता है जिसे सबसे पहले पता चलता है कि प्रेम हो गया है। हर ओर वसंत की भांति मन में हरियाली छाई रहती है। एक तड़प प्रिय के लिए सदैव बना सा रहता है। वह केवल नाम लेता फिरता है।

श्रोताओं, मन अच्छा होता है तो मनुष्य की खराब परिस्थिति भी सुखपूर्वक निकल जाती है, और यदि अपने मन में पिछले कर्मों का बोझ होता है तो अच्छे कार्य में भी इसका लगना संभव नहीं।

श्रोताओं, मन ऐसा ढीठ है जिसके ना होने से समय का गुजरना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अक्सर मन जिसके वश में होता है बस उसी को याद करता रहता है।

श्रोताओं, अंत में जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि मनुष्य यदि मन को स्वच्छ और पवित्र रखे तो यह सुंदर जगत हमें और भी सुंदर लगेगी। रंग, प्रेम, भाव, रस, ये सभी अपने चरम पर होंगी, पर हमें नुकसान नहीं, लाभ पहुँचाएंगी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यू ही गाते रहो।
1: विविध भारती
2: FM श्री विजयपुरम
3: 100.9 आपका हम सफर।

100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह विविध भारती FM श्री विजयपुरम है। दोस्तों, हमारे इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

0: देखिए अब घड़ी की ओर बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाए लेते हैं। सखियों और सखाओं से इजाजत, आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक युगल से। जी हाँ, ये हैं जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने, तो सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक मशहूर कलाकार जोड़ी की आमद है, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। लगान, गंगाजल, अब तक छप्पन, अपहरण, बवंडर, सिंह इज किंग, राउडी राठौर जैसी बहुत सारी चर्चित फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा आपने दिखाया है। वो हैं मशहूर अभिनेता यशपाल शर्मा जी और उनके साथ हैं उनकी शरीके हयात प्रतिभा शर्मा जी। प्रतिभा जी ने अपने करियर की शुरुआत रेडियो से की और आज रेडियो यानी विविध भारती के स्टूडियो में ये जोड़ी बैठी हुई है। लज्जा, दास कैपिटल जैसी फिल्मों में प्रतिभा जी ने अभिनय किया, बहुत सारी शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन किया इन्होंने। तो अब यशपाल जी, प्रतिभा जी का हम स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में। यशपाल जी नमस्कार, प्रतिभा जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है आप दोनों को यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
2: बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा सुखद लगता है। जब वीडियो नहीं होता है, ऑडियो होता है ना सिर्फ, तो आधार टेंशन कम हो जाता है। ना आपको तैयार होना, ना मेकअप करवाना है, बस आपको माइक के सामने बैठना और बोलना है और बेशुमार अपने दिल की बातें करनी है।
1: क्या
2: बहुत अच्छा लगता है रियली।
1: तो बस आज तो दिल की अलमारी खोलनी होगी आप दोनों को। आप बताइए प्रतिभा जी, आप तो रेडियो में अनाउंसर रही हैं, आपके लिए ये लम्हा कैसा है?
3: बिल्कुल, मुझे ऐसे मायके आ गए ऐसे लग रहा है।
1: तो फिर शुरू हो जाइए। मायके का जिक्र होता है तो लड़कियां फिर मायके पहुंच जाती हैं, तो मायके की वो याद साझा कीजिए। रेडियो में आप अनाउंसर थी
3: जी।

0: आकाशवाणी जलगांव में?
1: आकाशवाणी जलगांव में मैं अनाउंसर थी।
0: तो कैसे वहां तक पहुंची और कैसे वहां से वापस?
1: वहां रेडियो में तो मैं कैजुअल अनाउंसर थी, तो उस वक्त कैजुअल अनाउंसर्स का बहुत बोलचाला था।
0: जी जी।
1: तो उस वक्त बहुत मजा आता था, मतलब अलग अलग अलग से प्रोग्राम करने को मिलते थे, गाने बजाने को मिलते थे। वो जो अभी हम लोग जो रिकॉर्ड्स देख रहे थे वो हमें उस वक्त हमें बिल्कुल बजाने पड़ते थे।
0: क्या बात है। तो वो सारी यादें ताजा हो गई।
1: बिल्कुल,
0: बिल्कुल। तो बस यादों के गलियारों में हम आपको दोनों को ले चलेंगे। फिलहाल हम यशपाल जी से जानना चाहते हैं कि ये बरेली के बच्चन कैसे बन गए आप? बताइए।
2: हाँ, बरेली के बच्चन एक बहुत सालों बाद, शायद 14-15 सालों बाद मैं कोई सीरियल कर रहा हूँ, नीली छतरी वाले के बाद एक्चुअली, क्योंकि मैं सीरियल नहीं करना चाहता अपनी जिंदगी में कभी ज्यादा। लेकिन कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं वो आपको खींच लेते हैं, जैसे नीली छतरी वाले ने मुझे खींचा और मतलब बहुत मेरा लाइफ टाइम एक यादगार काम बन गया। उसी तरीके से बरेली के बच्चन का जो स्क्रिप्ट है और जो रोल है वो मुझे इतना भाया कि मुझे लगा कि अब सब कुछ छोड़ के थोड़ा टाइम इसमें बिताया जाए और इसमें जिया जाए और देखते हैं कुछ क्या चैलेंज आते हैं सामने, कुछ डिफरेंट करने के लिए, कुछ चैलेंजिंग करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ यादगार करने के लिए मैंने बरेली का बच्चन स्वीकार किया।
0: जी। और हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो जानना चाहेंगे, देखेंगे कि क्या है, कौन है बरेली के बच्चन। हमने तो सिर्फ ट्रेलर देखा है और हम भी उत्सुक हैं देखने के लिए।
2: शुरू हो चुका है ये
0: जी
2: 8 जून से और डेली रात को 9 बजे सोमवार से शुक्रवार आता है, और अगर आप मिस कर दें तो जियो हॉटस्टार पे वो परमानेंट रहता है।
0: क्या बात।
2: तो आप वहां भी देख सकते हैं।
0: जी। आपकी दोनों की फिल्मी दुनिया और जो टेलीविजन की दुनिया है, इतनी लंबी यात्रा है आपकी फिल्मों की कि बहुत कम शब्दों में मुश्किल है बात करना, लेकिन हम वहां चलते हैं पहले जहां यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा मिले। वो एनएसडी की दुनिया थी शायद। बताइए आप दोनों कैसे मुलाकात हुई, बारी बारी से। प्रतिभा जी आप बताइए पहले।
1: जी, मैं गलती से जब
0: गलती से मिली यशपाल जी से
1: गलती से मैं बॉयज हॉस्टल चली गई थी जब मुझे एनएसडी के लिए जा रही थी, मतलब गई थी मैं वहां पे इंटरव्यू के लिए। तो जो फाइनल हमारा इंटरव्यू होता है, वर्कशॉप होता है, उसमें 5 दिन का वर्कशॉप होता है, उसमें फाइनल सिलेक्शन होता है। तो उसके लिए जब मैं वहां से जलगांव से दिल्ली आई थी और दिल्ली जब मैं गई तो मुझे वहां पे बोल दिया गया कि आप वहां जाओ। तो मैं वहां वकील लेन में गई और वहां बॉयज हॉस्टल में टिकी रही, एक रात तो वहां में रही। तो सुबह मुझे आना था, तब मैं सामने से इधर से आ रही हूँ और यशपाल जी उधर से आ रहे हो लेन से, और हम एक दूसरे को देखे और फिर ये बोले कि चलिए मैं आपका सामान लेके चलता हूँ।
0: अच्छा, ये तो फिल्मी स्टाइल में बिल्कुल। फिर क्या हुआ?
1: बस फिर हमारा फाइनल सिलेक्शन में भी दोनों का नाम आउट हो गया, तो ऑफ कोर्स साथ में ही थे। फिर तो लड़ाई चलती रही।
0: अच्छा। पूछते हैं यशपाल जी से कि लड़ाई किस तरह की होती है, ये थोड़ा सा बाद में पूछेंगे, पहले जरा एनएसडी की बातें कर ले। यशपाल जी, हमने सुना है कि एनएसडी के लिए जब आप चले हरियाणा हिसार से, तो वो क्या जर्नी थी, वो क्या यात्रा थी, जरा बताइए।
2: वो यात्रा बहुत आसान नहीं थी। एनएसडी में कम से कम भी मैंने 3 बार अप्लाई किया, तब नहीं हुआ। तो 4थी बार किया तब हुआ।
0: अच्छा।
2: जिस साल प्रतिभा ने अप्लाई किया उस साल हुआ मेरा।
0: तो मतलब मुकद्दर ने इंतजार करवा के आप दोनों को मिलाया।
2: लेकिन 3 साल नहीं हुआ। 3 साल नहीं हुआ के बाद मेरा चंडीगढ़ में हो गया, इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट में। तो वहां से फिर 1 साल किया मैं, तो 1 साल बाद दिल्ली में भी हो गया, तो फिर मैंने दिल्ली शिफ्ट कर लिया। तो दिल्ली में उन दिनों 91 की बात है, 91 जून की, उसमें हमने शुरू किया था। प्रतिभा भी थी हमारी क्लास में, बाकी हमारे मुकेश तिवारी, आशुतोष राणा, कुमुद मिश्रा, बाकी बहुत सारे लोग मराठी भी, अनिरुद्ध खुटवड़ और अभय कुलकर्णी, तो ये भी साथ बहुत सारे लोग थे, जो बहुत अच्छा बैच था हमारा।
0: जी। तो ये आपके दोस्त लोग हैं आशुतोष राणा, मुकेश जी, इनसे जुड़ी हुई कोई खास याद साझा करना चाहेंगे आप?
2: नहीं, ठीक है, ये तो बहुत ऐसी बातें हैं जो कुछ शेयर नहीं कर सकते।
0: ओ।
2: तो ठीक है, उसको चल रहने देते हैं थोड़ा सा।
0: जी।
2: हाँ, लेकिन एक याद मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। कुमुद मिश्रा और मेरा चेहरा एकदम मिलता था उस वक्त।
0: जी जी जी।
2: तो मेरे जितने भी उसके प्रेस के कपड़े थे, लॉन्ड्री वाला मुझसे मांगता था।
0: अरे। अच्छा।
2: और आशुतोष राणा ने अपने आप को मतलब

0: हीरो साबित करने के लिए एक दिन क्या किया हाँ। कि अपने बाल कर्ली करवा लिए।
1: अच्छा।
0: और कर्ली करवा लिए, बिल्कुल मलिंगा जैसा दिख रहा था वो, तो मतलब और बहुत खराब दिख रहा था। तो जो भी, अरे ये क्या करवा लिया, सबका रिएक्शन यही है, अरे ये क्या करवा लिया,
2: कुछ ना कुछ करवाते ही रहता
0: था। बता रहा था भाई 400 रुपए बहुत ज्यादा थे उस वक्त, 400 रुपए तो हमारी स्कॉलरशिप थी उस वक्त, तो बोलो 400 रुपए में करवाए हैं बाल कर्ली। तो और जिस जो भी देखे रितु तलवार थी, वो भी अरे बाप रे कितना खराब लग रहा है यार आशु, ये क्या कर लिया तूने। तो बेचारा इतना परेशान हो गया, शाम को जब हॉस्टल गए तो हॉस्टल के बाहर नाई बैठा था, तो 2 रुपए में गंजा हो गया। मैं नहीं भूल सकता वो आशुतोष राणा की वो बात।
1: जी, तो वैसे भी बड़े उनके बारे में बहुत सारे किस्से मशहूर हैं, और कोई किस्सा याद आएगा बातचीत के दौरान तो जरूर साझा कीजिएगा, और वो आपके दोस्त भी हैं। तो यहाँ दोस्ती के नाम या उन दिनों के नाम कोई गाना सुनवाना चाहेंगे, कौन सा किसकी पसंद का गाना सुना है, प्रतिभा जी या यशपाल जी?
0: प्रतिभा जी,
2: पिया तो उससे
1: नैना लगे रे। वाह भाई क्या बात है, गाइड फिल्म का गाना है, तो यही गाना सुनते हैं।

0: भाई ये गाना पिया तो से नैना लागे रे, ये इन्होंने आपके लिए ही मुझे लगता है सुनवाया होगा यशपाल जी। तो मुझे आपसे ही जानना है कि ये प्रतिभा जी ने जिक्र किया कि आपने इनका सामान उठाया, तो ये जो प्रेम का बीज था आप दोनों के बीच, प्रेम का पौधा कैसे रोपा गया?
1: पौधा नहीं था, बहुत भारी बैग था।

0: इसका जो जो मैंने उठाया था
1: जी,
0: और तकरीबन 150 मीटर 200 मीटर होगा
2: वहाँ चल के जाए
0: हॉस्टल से वहां तक, तो वो मंडी हाउस क्रॉस करके पूरा, तो वहां गए थे। तो प्रेम का बीज ऐसा कोई फिल्मी कहानी की तरह ऐसा नहीं था हमारा, हम मर जाएंगे तुम्हारे बगैर और या मतलब हाँ, लेकिन एक फिल्मी बात जरूर थी कि 3 साल तो हमने खूब लड़ाइयां की, अच्छे काम किए, नाटक किए, और एक में तो हम चंद्रहास में भाई बहन बने थे और बहुत ही बढ़िया प्रोसेस रहा सारा। लेकिन जब खत्म हुआ और जब ये चली गई तब बड़ा मैंने मिस किया, क्योंकि भाई अब कोई ना तो लड़ने वाला, ना कोई प्यार करने वाला, ना रूठने वाला, ना मनाने वाला, तो बड़ा मिस किया। तो मैं एक दिन फिर सीधा इसके घर पहुंच गया जलगांव।
1: अच्छा,
0: दिल्ली से जलगांव सीधा दरवाजा खोला और ये माँ बेटी मेरे सामने खड़ी, और ऐसे हैरान। और फिर मैं चला गया और फिर उसी ट्रेन से वापिस आ गया, मगर नहीं तुम साथ चलो।
1: अच्छा,
0: तो भाई ऐसे नहीं जा सकते, शादी वादी करना पड़ेगा, बच्ची बड़ी हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है करवा लो, कल कर लेते हैं। बोले नहीं अभी तो तारा डूबा हुआ है। मैं कहा तारा तो हम निकाल लेंगे। तो आर्य समाज मंदिर में गए तो वो बोले पंडित जी के भाई तारा डूबा हुआ हम नहीं मानते। तो मैंने कहा तो फिर करवा डालो आज। तो बस थोड़ी देर बाद शायद दोपहर तक सारी तैयारी करके हमने शादी कर ली। शादी के दौरान, फेरों के दौरान पता लगा कि वो पंडित जो था वो हिसार का था हमारे।
1: अरे
2: तो यशपाल के वहां से कोई नहीं था तो वो हिसार के थे।
0: तो बड़ा कोइंसिडेंस रहा बाय चांस, और ऐसे शादी हो गई। और फिर पहली बार जिंदगी में मैं और प्रतिभा एसी कोच में सफर करके जलगांव से दिल्ली गए।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर एक गाना जरूरी लग रहा है, प्रतिभा जी बताइए कौन सा गाना, या यशपाल जी आप बताइए।
0: हुई शाम का
1: ख्याल आ गया है।
0: हाय हाय हाय।

0: प्रतिभा जी की जो प्रेम की नैया चल पड़ी है यूं कहेंगे, और आपकी जिंदगी का सुनहरा और सुरीला सफर चल पड़ा है, तो इस सफर की आगे की कहानी आप बताइए। फिर जब साथ में रहने लगे, फिर वो नोक झोंक तकरार के दिन, कौन सी ऐसी बात है जो यशपाल जी की पसंद हुई नापसंद हुई वो बताइए।
1: नहीं नहीं हम लोग साथ में काम करते थे रेपेट्री में और साथ में खाना खाते थे और उतना ही हमारा मिलना होता था पूरे दिन में। बाकी पूरा दिन हम दोनों काम में लगे रहते थे।
0: कौन सा काम था?
1: रेपेट्री में एज एन एक्टर काम करते थे, नाटकों की रिहर्सल कंटिन्यू होती रहती है।
0: तो कौन से वो नाटक थे जो उन दिनों रिहर्सल चल रहे थे?
1: आइंस्टाइन कर रहे थे हम लोग, मुआवजे कर रहे थे, कर्मा वाली थे, ये सारे नाटक वहाँ पे उस वक्त चल रहे थे, उसमें ही हम लोग काम कर रहे थे। हमारे वक्त कुछ नाटक नए शुरू हुए थे आइंस्टाइन जैसे, तो वो नाटकों की रिहर्सल चलती रही।
0: दोनों लोग उसमें किरदार,
1: यशपाल तो आइंस्टाइन बने हुए थे, मैं उनके जो उनकी वाइफ है उसकी फ्रेंड बनी हुई थी उस नाटक में
0: जी,
1: मारिया
0: जी। यशपाल जी से हम जाना चाहते हैं, अब फिल्मों की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, फिल्मों के नाम क्या गिनाए, गंगाजल, अपहरण, बवंडर, बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लगान फिल्म आपके फिल्मी करियर का टर्निंग प्वाइंट हो सकता है, तो लगान फिल्म से हम शुरू करते हैं। लगान फिल्म की कहानी बताइए, कैसे आप जुड़े, कैसे आमिर खान से मुलाकात हुई, कैसे आशुतोष गोवारिकर से मिले आप, दोनों कहानी बताइए आप।
2: लगान वाकई में मेरे जिंदगी का एक टर्निंग प्वाइंट था, क्योंकि लगान तक ही मैंने स्ट्रगल किया ऑफिस घूम करके, उसके बाद नहीं किया फिर मैंने, क्योंकि अपने आप फोन आते थे, बात होती थी, काम मिल जाते थे। तो लगान जब मिल रहा या मिली थी, उस वक्त हम वनराई कॉलोनी में रहते थे, जहां सिर्फ एक कमरा था, बिल्कुल छोटा सा, एक छोटा सा बाथरूम था और छोटी सी बालकनी थी और एक स्लैब था जिसे किचन का नाम दे दिया गया था। तो हम दोनों उसी में रहते थे और वहां सारे स्ट्रगलर, राजपाल यादव, विजय राज, ये अनूप सोनी, कुमुद मिश्रा, सब वहीं रहते थे। बहुत सारे सीमा विश्वास, राजेश तैलंग, सब वहीं रहते थे। बहुत बड़ा एक स्ट्रगलर का अड्डा था,
1: हाँ था वो
2: स्ट्रगलर, सब लोग स्ट्रगल, क्योंकि सस्ता था ना, तो सब लोग वहीं आके रुक जाते थे। तो वहां रहते थे हम, तो वहां हमारे पास पेजर था। पेजर में मैसेज आया कि कॉल आमिर खान प्रोडक्शन और क्लेमेंटिना डैश क्लेमेंटिना। मैंने कहा ये क्लेमेंटिना क्या है भाई, ये जरूर किसी ने प्रैंक खेला है, कोई कान खिंचाई कर रहा है हमारी। तो मैंने सोचा चलो काम तो कुछ था नहीं
0: जी जी,
2: मैंने कहा फोन तो कर लेते हैं। तो मैंने फोन किया तो आमिर खान प्रोडक्शन में लगा फोन, तो वहां उठाया, लैंडलाइन था उस वक्त, मोबाइल नहीं थे, तो लैंडलाइन था, तो उसमें क्लेमेंटिना ने उठाया, तो वो एक लड़की का नाम था,
0: अच्छा,
2: क्रिश्चियन लड़की का
0: जी।
2: तो मैं बोला, तो वो बोले आशुतोष गोवारिकर कल मिलना चाहते हैं आपसे, आप आ जाइए ऑफिस, ये एड्रेस भेज रही हूँ मैं, पेजर पे मैसेज आ गया मुझे। और मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने 3.5-4 घंटे ऐसे घूम घूम के कमरा बंद किया, बोले नोबडी विल डिस्टर्ब मी, और घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। ये कमाल की बात है, मैंने उनसे सीखा कि अपने खून में पूरी कहानी होनी चाहिए, जो कि मैंने फॉलो किया बाद में डायरेक्ट करते हुए। तो उसने सुनाई, और रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल है, मतलब इसमें वेरिएशन भी है, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी। तो और उसने बोला कि लाखा के लिए हम ढूंढ रहे हैं,
0: क्या बात है।
2: तो मेरी तो ऐसे, मैंने कहा भाई थैंक यू भाई, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा, मैंने थैंक यू वैंक यू नहीं है, ऑडिशन देना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ऑडिशन देंगे ना। तो अगले दिन मुझे बुलाया आमिर खान के घर पे और वहां ऑडिशन हुआ। ऑडिशन दे करके मैं निकला, और निकलते ऑटो में बैठा ही था, 10

0: मिनट हुए होंगे मुझे कि मेरे पास मैसेज आ गया कि यू आर सिलेक्टेड.
1: क्या बात है,
0: मैं स्टेशन जा रहा था ट्रेन पकड़ने, तो मैं तो मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी फिल्म इतने बड़े स्टार के साथ मेरा मतलब सिलेक्शन हो रहा है और इतने बड़े रोल के लिए, तो मैं तो बड़ा खुश था. तो उन्होंने क्या है, आमिर खान को भेजा ऑडिशन. उसी वक्त आमिर खान मद्रास में थे, ए आर रहमान के पास म्यूजिक के लिए कुछ बैठे हुए थे. तो उसके बाद मैं घर गया, उन्होंने बोल दिया कि सेलेक्ट, मतलब उन्होंने हाँ कर दिया मेरे लिए, तो हो गई बात. अब अगले दिन मुझे आना था प्रोडक्शन पैसे की बात करने, तो रीना दत्ता से.
1: जी जी,
0: रीना दत्ता उनकी जो वाइफ थी, प्रोड्यूसर थी उस वक्त, तो उन्होंने बोला कि भाई आप पैसे की बात कर लो. तो मैं रास्ते भर ट्रेन में ये सोचता रहा कि साला यशपाल इस बार ना तू सब छोड़ 1,00,000 रुपया मांग लो. ये मौका है, बड़ा प्रोडक्शन है और मतलब मिल जाएगा, कोई मना नहीं करेगा. फिर ख्याल आया कि यार अगर उन्होंने नहीं दिए तो मैंने कहा फिर 80,000 में कर लूंगा. फिर सोचा चलो 40-50 हजार में कर लूंगा. अरे यार मैंने कहा काम तो कुछ है नहीं, 20,000 मिलेगा तो भी कर लूंगा.
1: क्या बात है,
0: फिर मैं गया रीना दत्ता जी के ऑफिस में गया, तो रीना दत्ता जी ने पहली बात यही बोली कि यशपाल हमारा बजट बहुत कम है, हम सबको 1.5-1.5 लाख रुपए दे रहे हैं. तो मेरे मुंह से निकल गया नहीं नहीं मैडम, इतना लंबे दिन है, इतना बड़ा रोल है, 2 लाख तो होना चाहिए. तो मैडम ने बोला ठीक है साइन कर दो.
1: क्या बात है,
0: अब देखो ये होता है. और वो भी फिर 4.5 महीने के लिए था, फिर शेड्यूल बढ़ गया, फिर 1 महीना, फिर 50,000 और एक्स्ट्रा बढ़ गए और 250 रुपया पर डे एक्स्ट्रा और मिलता था. तो मतलब मौज ही मौज हो गई थी. खैर वो बात अलग है, लेकिन लगान ने जो दिया पूरी दुनिया में घुमाया. पूरी दुनिया में हम फेस्टिवल्स में गए और अमेरिका कनाडा के टूर पे भी गए, दुबई हर जगह बहुत जगह गए हमने, पूरी दुनिया मलेशिया मॉरिशस सब जगह घुमा दिया इस फिल्म ने. और बहुत कुछ दिया और ऑस्कर में नॉमिनेट हुई, बेस्ट 5 में चली गई थी
1: जी, बिल्कुल
0: बिल्कुल कांटे के टक्कर में बची लास्ट में. तो ये था किस्सा लगान का.

0: आपने जैसे बताया कि विविधता थी इस कहानी में आपने जब सुना, लेकिन लाखा का किरदार बड़ा ही अलग तरह का था, बड़ा महत्वपूर्ण था। उस किरदार को गढ़ने के लिए आपको किस तरह की तैयारी करनी पड़ी निजी तौर पर?
1: तैयारी उन्होंने एक हफ्ता पहले बुला लिया था आशुतोष गवारी करने सबको
0: जी।
1: मुझे याद है मेरा जन्मदिन था 1 जनवरी को और 1 जनवरी को ही मेरी फ्लाइट थी, तो वो उसी दिन मैं गया था और 7 तारीख से शायद शूटिंग शुरू थी, 6 या 7 से
0: जी।
1: तो एक हफ्ता हम वहां पूरे गांव में घूमते थे, मीटिंग करते थे और आशुतोष ग्वारीकर हर किसी के पास आकर के बताता कि ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी लकड़ियां पड़ी हैं, तुम वहां से जंगल से लकड़ियां काट के लाते हो, लकड़हारा हो और यहाँ लकड़ियां इकट्ठी करते हो और फिर गांव में एक जैसे 4-4 लकड़ी या 10-10 लकड़ी ऐसे बेचते हो गांव में। तो मतलब एक करेक्टर मेरा समझ में आ गया था और यहाँ से वो सामने गौरी का घर है हीरोइन का, उससे तुम प्यार करते हो इसलिए ज्यादातर तुम यहीं खड़े रहते हो और क्या है कि उसका बाप जो है हीरोइन का वैद है, तो मैं क्या करता हूँ जानबूझ के ना अपना हाथ वाथ काट लेता हूँ ताकि उसके पास पट्टी बंधाने जा सकूं।
0: अच्छा, क्या बात,
1: गौरी को देखने के बहाने
0: जी, जी, जी।
1: तो इस तरीके का करेक्टर मेरा था पूरा और मैं नफरत करता हूँ सिर्फ एक ही इंसान से, वो है भुवन जो हीरो है आमिर खान, क्योंकि वो हीरोइन को चाहता है, हीरोइन उसको चाहती है, तो इसलिए मेरा ये जेलसी भी काफी निकल के आई। लेकिन बाद में जब पता चला कि देश प्रेम और ये प्रेम अलग है एक तरफा, तो इसकी कोई मैं क्या कर रहा हूँ अब इसके लिए मैं देश को धोखा दे रहा हूँ, वो एक एहसास हुआ और फिर मैंने पूरी शिद्दत के साथ मैच जितवाया
0: जी।
1: कुदरती अभी उसके 25 साल पूरे हो रहे हैं।
0: क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। आशुतोष जी कैसे हैं बातचीत करने में निजी तौर पर, उनकी कोई खासियत बताना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, बहुत क्लैरिटी है उनके अंदर, वो प्री प्रोडक्शन में बहुत सारा काम कर लेते हैं, पूरी फिल्म का मतलब जर्रा जर्रा उनके दिमाग में और खून में बसा हुआ होता है कि क्या करना है मुझे
0: जी।
1: ये बहुत अच्छी बात है, हालांकि मैं उसके भी पक्ष में नहीं हूं, सारी चीजें कैलकुलेटेड नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ चीजें स्पॉन्टेनियसली छोड़ देनी चाहिए, जो कि लगान में उन्होंने किया।
0: बिल्कुल,
1: लगान में किया उन्होंने, काफी कुछ काम करके कुछ चीजें एक्टरों पे छोड़ दी थी और स्पॉन्टेनियसली जो होता था उस पे उसी हिसाब से किया, क्योंकि कैमरामैन अनिल मेहता थे जो बहुत ही सजे हुए कैमरामैन थे, तो टीम भी बहुत बढ़िया थी, अच्छे सब एक्टर लिए हुए थे और क्रू भी बहुत कमाल का था सारा। अपूर्व लाखिया उसका चीफ एसोसिएट डायरेक्टर था, जो कि आजकल बहुत बड़ा डायरेक्टर बन चुका है, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की हैं अभी, तो बहुत बढ़िया टीम थी। और आशुतोष गवारीकर की क्लैरिटी कमाल की थी, उसको मालूम था कि मुझे क्या चाहिए और वो उनसे एक्टरों से निकलवा लेता था
0: जी। और आमिर खान तो परफेक्शनिस्ट हैं।
1: बिल्कुल, आमिर खान के साथ उनकी बहुत सारी मुलाकातें हमारी शूटिंग से पहले ही हो चुकी थी और सब कुछ तय हो चुका था कि क्या करना है।
0: बिल्कुल, और आप दीजिए एक गाना, आप बताइए कौन सा गाना सुनवाए यहाँ पर?
1: लगान का ही सुनवा दो।
2: हाँ, वो बहुत इंस्पायरिंग,
1: कोई हमसे जीत न पाए,
2: कोई हमसे जीत न पाए।

0: इस फिल्म से जुड़ा हुआ अनुभव आप साझा करना चाहेंगी प्रतिभा?
1: हाँ बिल्कुल, जैसे ये फिल्म इतनी हिट हुई उसके बाद हमारे बच्चे हुए, तो मेरे बच्चों को मैं रोज लगान दिखाती थी और बच्चे इतने ज्यादा यूज टू हो गए थे उस लगान के, मम्मी लगान लगाओ ना, मम्मी लगान लगाओ, रोज देखना उनको लगान रोज।
0: तो और भी बहुत सारी फिल्में हैं यशपाल जी की और
1: नहीं,
0: आपकी,
1: वो
0: तो
1: नहीं देखनी, ये ही देखनी,
0: सिर्फ यही देखते हैं। और जब आप बड़े हो गए हैं बच्चे तो फिल्म देखते हैं तो कोई टीका टिप्पणी करते हैं एक्टिंग के बारे में?
1: अरे उनके फेवरेट एक्टर है उनके पापा।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। कोई आना चाहते हैं फिल्मी दुनिया में?
1: हाँ बड़ा वाला तो कोशिश भी कर रहा है
0: जी, नाम बताएं तो?
1: सौम्य शर्मा।
0: चलिए सौम्य जी के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
2: अरे हाँ एक मिनट, सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जब लगान की शूटिंग चल रही थी तो प्रतिभा का फोन आया, अरे बाबा क्या कर रहे हो तुम, कौन सी फिल्म कर रहे हो, धोती बोती वाली? देखो यहाँ पे इतनी सुपर डुपर हिट हो गई है, ऋतिक रोशन की पहली फिल्म थी। कौन सी थी वो? बोली बाप रे एक ऐसा हीरो आ गया है जो उसने सबको फेल कर दिया, चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है, हाउसफुल जा रहे हैं, और क्या फिल्म बन रही, क्या फिल्म बनी है, मैं भी देख के आई।
1: ऋतिक रोशन की पहली फिल्म जो थी
2: कहो ना प्यार है,
1: कहो ना प्यार
2: है। तो मैं डर गया भाई, मैंने कहा छोड़ दूं क्या लगान, क्या क्या कर। लेकिन देखिए वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुई, लगान भी, और लगान के साथ गदर भी रिलीज हुई, गदर भी सुपर डुपर हिट हुई।
0: जी जी जी बिल्कुल। प्रतिभा जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक फिल्म थी राजेंद्र कोठारी की, है ना, याद होगी आपको, दास कैपिटल। तो इसमें आप हीरोइन है और यशपाल जी हीरो, निजी जिंदगी के हीरो भी वही है। तो ये पर्दे पर उनको हीरो के रूप में देखना, खुद को हीरोइन के रूप में देखना, ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, अनुभव कैसा?
1: नहीं हम लोग पहले से मतलब साथ में काम करते आए थे, तो मैं जब गुलजार साहब के साथ और मैं जब श्याम बेनेगल साहब के साथ काम कर रही थी तब मुझे राजेंद्र कोठारी जी ने नोटिस किया था एज एन एक्टर, तो उनके मैं याद में थी, ध्यान में थी। तो उन्होंने हालांकि सीमा विश्वास को कास्ट किया था और यशपाल की जगह कौन और एक्टर थे,
2: रघुवीर यादव
0: जी
1: उनके दिमाग में थे, पर जैसे ही उन्होंने मेरे वो वाले काम देखे थे वो, क्योंकि वो ही उसमें कैमरामैन थे, तो उन्होंने वहां से मुझे नोटिस किया था और फिर उन्होंने मुझे घर पे आके बोला कि ये रोल सिर्फ प्रतिभा करेगी, बस दैट्स ऑल।
0: जी जी, तो इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ी हुई कोई खास याद साझा कीजिए, दोनों लोग साथ में जाना, अमूमन अलग अलग शूटिंग पे जाते होंगे?
1: नहीं तब हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो मम्मी आई थी उनको संभालने के लिए, मम्मी पापा मेरे, और हम दोनों वहीं पे रहते थे जहाँ पे लोकेशन था,
2: मनोर में थी लोकेशन, वहीं होटल ले रखा था हमने।
0: जी जी जी,
2: सब लोगों ने

0: पूरी कास्ट क्रू ने, तो वहीं होटल रहते, वहीं बाजू में ही गांव था, तो वहीं करते थे।
1: लेकिन
0: बच्चे
1: बहुत
0: भी साथ
1: सुंदर,
0: में थे।
1: बहुत सुंदर थी वो फिल्म।
2: तो आपने कहा बच्चे छोटे थे, और तो बच्चों के साथ एडजस्टमेंट थोड़ा मुश्किल होता है, सामंजस्य जिसको कहेंगे, क्या कैसे आप सामंजस्य बिठाती थी?
1: तो उस वक्त तो मतलब छोटे थे ही, ऑफकोर्स तो करना पड़ता था ना उनके साथ काम, मम्मी उनको भेजती थी स्कूल, और फिर मैं यहां से और क्या ही कर सकती हूँ फोन ही कर सकते हैं।
2: बच्चे जब मिलते थे रोते थे तो फिर दिल,
1: नहीं रोते भी नहीं थे वो, बड़े उस तरह के
2: अच्छा
1: बच्चे हैं कि मतलब समझदार है,
2: उनको पता था कि
1: उनको
2: मम्मी
1: पता
2: पापा को आगे बढ़ना है ऐसे
1: पर
2: साथ में।
1: एक दिन मुझे, मैंने वो जो उस ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी जो मैं अपने मायके के लिए जाने के लिए रोती हूँ, तो वो उसको बिल्कुल ही छोटा था मेरा बेटा, तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से 5-6 साल का होएगा, तो मुझे बोल रहा है मम्मी तुम एकदम चमक छल्लो लग रही हो ये शब्द भी उसको पता नहीं कहाँ से मिला
2: जी, तो बच्चे देखते रहते हैं तो, और बहुत कुछ सीखते हैं टेलीविजन से सीखते हैं। तो यहाँ पर बात बच्चों की है, बच्चों के लिए कोई गाना

0: वो उसको बिल्कुल ही छोटा था मेरा बेटा, तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से 5-6 साल का होएगा, तो मुझे बोल रहा है मम्मी तुम एकदम छमक छल्लो लग रही हो। ये शब्द भी उसको पता नहीं कहाँ से मिला।
1: जी, तो बच्चे देखते रहते हैं तो और बहुत कुछ सीखते हैं, टेलीविजन से सीखते हैं। तो यहाँ पर बात बच्चों की है, बच्चों के लिए कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: हाँ बिल्कुल, लकड़ी की काठी बहुत सुंदर गाना है।
2: लकड़ी

0: हमारी शरारतें क्या होती थी, अमरूद चुरा लिए, आम चुरा लिए, मूलियां चुरा ली, गाजरें चुरा ली, मतलब खेती बाड़ी में जो चोरियां कर ली, लोहा चुरा लिया,
1: अरे
0: लकड़ियां काट के ले आए चोरी से। तो ऐसे ऐसी चोरियां थी हमारी और ऐसी ऐसी शरारतें थी। बकरी को चराने ले गए, गाय को चराने ले गए, तो वहां से लकड़ियां वगैरह इकट्ठी करके, गोबर वगैरह इकट्ठा करके ले आए। हमारा तो इसी में पूरा बचपन बीत गया, खेल पतंगे खेल के, और गेम बहुत खेले हमने बचपन में। आज के बच्चे गेम जानते भी नहीं है, वो लुकम छिपाई, पकड़म पकड़ाई, पतंग खेलना, ये काठ कटम्बर, लोहा लंबर,
2: हाँ,
0: कोकला खिपाखी, जिम्मे रात आई जे, जेड़ा आगे पीछे देखे उसकी शामत आई जे, बहुत सारे ऐसे गेम है जो, फिर वो डिब्बियां, ढक्कन, ये सब खेलते थे हम, बड़ा खजाना था। आज तो देखो कोई पूछेगा भी नहीं, लेकिन उस वक्त में वो हमारा खजाना था। कंचे बंटे जो होते हैं ये, और इस तरीके की चीजें इकट्ठा करना, गुठलियां, हाँ इमली की गुठलियां,
2: हाँ,
0: वो भी बहुत, हाँ बहुत कीमती चीजें थी ये हमारे लिए। तो ये सब इसी में बचपन बीता है, जो कि बहुत बेशकीमती मैं बोलता हूँ, कि बहुत अमीर बचपन में बोलता हूँ उसको, रिच बचपन, जिसमें एक्सपीरियंस ज्यादा थे। बेशक पैसा नहीं था, लेकिन इतने एक्सपीरियंस थे और इतना बढ़िया बचपन था कि मैं तो तरस गया हूँ अपने बच्चों को वो जिंदगी देने के लिए। काश वो भी ले पाते वो सब, लेकिन बॉम्बे में बहुत मुश्किल है, और आज के मोबाइल और इस जमाने में तो और भी मुश्किल है।
1: बिल्कुल,
0: हमारा बचपन जो बीता है वो तमस
1: जी,
0: कथा सागर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये चीजें देख के, कौन सा था वो
1: है, मालगुड़ी डेज,
0: मालगुड़ी डेज, यस, गालिब का एक सीरियल था,
1: मिर्जा गालिब,
0: फौजी, शाहरुख खान वाला, फिर वो एक दो और थे जो सर्कस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें।
1: तो ये जो दूरदर्शन वाले धारावाहिक थे ये तो अलग थे, तब उस समय मतलब एक्टर की बजाय लोग किरदार के रूप में जानते थे, जैसे
0: हम
1: सीरियल के नाम से, हम लोग, हाँ हम लोग से याद आया,
0: बुनियाद
1: की बड़की, बड़की और छुटकी, वो किरदार से हम लोग जानते थे। और मुझे लगता है कि आप ऐसे एक्टर हैं जिनको आपके नाम से ज्यादा आपका किरदार ज्यादा जाना जाता है। मतलब मैंने अभी जब देख रही थी तो आपकी अनगिनत फिल्मों में लोग किरदार के नाम से जानते हैं, तो आपको कैसा लगता है जब किसी किरदार से खासतौर से आपको बुलाया जाता है, कहा जाता है? तो
0: नहीं, बिल्कुल, इसका मतलब हमारी मेहनत सफल हुई है
1: जी,
0: बहुत अच्छा लगता है ये। तो अभी तो खैर नाम से भी जानने लग गए हैं सब लोग, और कोई ये बोलता है कि आपका नाटक देखा वो वाला बहुत अच्छा, तब तो और ज्यादा खुशी होती है। या फिर मेरी डायरेक्ट की हुई एक फिल्म है जो कि एक कल्ट फिल्म बन चुकी है हरियाणा में, उसकी बात करता है कोई तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है
1: जी, जी।
0: तो ऐसे ऐसे काम जो आपने, आप पब्लिकली ज्यादा नहीं फ्लरिश हुए लेकिन आपके दिल के करीब हैं कुछ काम, या तुगलक नाटक है जैसे, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो देखा कोई बोलता है तो मजा आ जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि वाह, किसी एयरपोर्ट पर या कहीं किसी और शहर में कोई ऐसे बोल देता है तो ऐसा लगता है कि चलो कुछ तो बढ़िया हो रहा है।
1: बिल्कुल, नाटक का जिक्र किया आपने तो हमें याद आया कि एक नाटक किया था जो लगभग 3 घंटे चला था, वो कौन सा नाटक था और उस पर आपने दर्शकों को हंसाया, जिसमें मुकेश तिवारी भी है?
0: अच्छा, वो बड़े न खेले छोटे खेल,
1: जी जी,
0: हाँ हाँ, वो एक फ्रेंच प्ले है डरियो फो का लिखा हुआ, आर्कएंजल्स डोंट प्ले पिनबॉल गेम, उसका हिंदी अनुवाद है
1: जी।
0: और उसमें मेन रोल मैंने किया था लॉफ्टी का, और उसमें 3.5 घंटे का नाटक था वो, तो ये समझो कि 2.5 घंटे तक तो लगातार हंसाया, फिर 10 मिनट रुलाया, फिर आखिरी के 5 मिनट फिर हंसाया, तो ऐसा उसका प्रोसेस था, और वो कहानी भी ऐसी थी, तो बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस रहा था वो। मुकेश तिवारी डबल कास्ट में था मेरे साथ
1: जी।
0: मतलब एक दिन मैं करता था, एक दिन वो। मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस वाइज अभी तक का मेरा सबसे एनर्जेटिक परफॉर्मेंस रहा है वो
1: जी,
0: वो हुआ, आइंस्टाइन हुआ या
1: परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस के हिसाब से तो बहुत सारी फिल्में आपके खाते में हैं, गंगाजल जो शुरुआती फिल्म है और प्रकाश झा जिसके डायरेक्टर हैं, तो गंगाजल की बात आप बताइए हमारे श्रोताओं को, कैसे जुड़े प्रकाश झा से, ये आपके शुरुआती दिन थे और संघर्ष के भी दिन थे?
0: प्रकाश झा का मैसेज आया था मेरे पास, फिल्म करने वाला हूँ मैं, तो मेरे बारे में सुना किसी से उन्होंने, NSD के ही कई लोग बता देते हैं ना, तो मैं गया तो बस उनसे बातचीत हुई, और उन्होंने बोला कि ये रोल है एक सुंदर यादव का, ये साधु यादव का बेटा है, साधु यादव जो है मेन विलेन है इसमें, तो हम उनके बेटे हो
1: जी,
0: बिगड़ैल बेटे। तो मैंने बोला कि ठीक है, करता हूँ, भी कर ली हूँ मैं।

0: हो गई। तो मैंने बोला स्क्रिप्ट दे दो, तो बोला स्क्रिप्ट तो मैं अजय देवगन को ना दूं। तो मैं बोला ठीक है भाई। तो फिर मैंने बोला अच्छा मैं यहीं पढ़ लेता हूँ आपके ऑफिस में। बोले हाँ यहीं पढ़ लो, लो। तो मैंने वहां बैठ करके 3 घंटा स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने
1: जी।
0: और पढ़ करके मैंने बोला कमाल रोल है जी, मैं करूंगा। हालांकि उसमें डायलॉग नहीं थे कुछ भी ज्यादा, और लिखा हुए में सुंदर यादव कुछ भी नहीं था, लेकिन फिल्म करते करते करते करते मेरे सीन लिखे जाने लगे।
1: क्या
0: और
1: बात है?
0: हाँ, और मेरा रोल बढ़ता गया बढ़ता गया और वो मेन विलेन में आ गया तकरीबन तकरीबन क्या एक्चुअली में
1: जी।
0: तो वो प्रकाश झा की खासियत है कि उन्होंने देखा कि ये पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है इसकी, तो उन्होंने मेरे रोल को बहुत अच्छे से उभारा और पूरा फुटेज दिया।
1: जी बिल्कुल।
0: गाना भी था, एक आइटम सॉन्ग था जो ये संजय दत्त की वाइफ है मान्यता, उन्होंने डांस किया था उस पे।
1: जी अब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना है सुनवाया।
0: यहाँ तो मेरा फिल्म है ना, ये सिंग इज किंग का एक गाना बड़ा अच्छा है,

0: सच बताऊं तो विविध भारती में जब मैंने जिक्र किया कि यशपाल जी आ रहे हैं, यशपाल शर्मा जी, बोले गंगा जल वाले, गंगा जल आपके नाम के साथ कैसे जुड़ गया है?
1: जुड़ गया है। अरे सुनिए, मैं सिक्किम में

0: शूटिंग कर रहा था सिक्किम में, पेलिंग करके एक जगह है जहाँ
1: जी जी जी
0: डैनी साहब हैं जहाँ के,
1: हाँ
0: तो पेलिंग में शूटिंग कर रहा, जानू बरुआ डायरेक्टर थे, और वहां पर एक छोटी सी बच्ची मिली मुझे और बोल रही, अंकल अंकल आपने गंदे आदमी का रोल बहुत अच्छा करते हो। मैं बोला क्या देखा बेटा तूने, मैंने समझ नहीं आया, तारीफ कर रही है कि बेइज्जती कर रही है। तो मैंने बोला बेटा क्या देखा तुमने, अरे वो जो अजय देवगन के साथ किया ना आपने, आंख फोड़ने वाला, बहुत अच्छा था। मैं बोला अच्छा गंगा जल की बात कर रही है। तो ये भी
1: क्या
0: एक
1: बात है।
0: तरीका है बच्चों का।
1: जी
0: मेरी वाइफ
1: जी
0: भी प्रतिभा नहीं देखने देती बच्चों को, गंगा जल देखने नहीं देती
1: अच्छा
0: ना, बोल रही है बहुत वायलेंस है, बहुत वायलेंस है।
1: वो छोटे छोटे
0: तो,
1: बच्चे थे मैं
0: और
1: गांव में
0: वाकई में
1: तभी
0: वो
1: तो आप
0: पिस्तौल लेकर के ठा ठा ठा ठा करते थे ना, जब ऐसी फिल्में देख करके, तो मुझे भी अपने आप पे ना ग्लानि हुई कि यार यशपाल तेरी वजह से बच्चे कितने बिगड़ रहे होंगे ऐसे, तो ये ऐसे रोल मत कर। तो मैंने ना वाकई कॉन्शियसली उस तरीके के रोल करना बंद कर दिया था। अब कई बार नहीं पता होता और करना होता पड़ता है, जैसे राउडी राठौड़ है या कोई जिसमें वायलेंस बहुत है तो करना पड़ता है, लेकिन मैंने खुद सो डिसाइड किया कि मैं खुद नहीं करूंगा ऐसा कुछ
1: जी जी
0: जिसमें बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़े।
1: चमेली में आप बने थे केपी सिंह, उसके बारे में बताइए, वो उस भूमिका के बारे में बताइए। करीना कपूर इस फिल्म में थी, बड़ी सुंदर फिल्म थी,
0: बहुत
1: हमने
0: प्यारी
1: देखी।
0: फिल्म थी,
1: हाँ
0: सुंदर फिल्म थी, और मेरा रोल बहुत बड़ा नहीं था लेकिन बहुत कमाल रोल था मेरा, क्योंकि बहुत लोगों ने चमेली का नाम लिया है। छोटा रोल लेकिन प्रभाव छोड़ने वाला रोल
1: जी
0: था, क्योंकि वो करीना कपूर की और राहुल बोस की सारी समस्याएं सॉल्व कर देता है
1: जी
0: आखिर में आकर के। सुधीर मिश्रा मेरे फेवरेट डायरेक्टर रहे हैं,
1: डायरेक्टर
0: और जब भी उन्होंने कोई भी रोल दिया, मेरे ख्याल पहले हजारों ख्वाहिशें ऐसी, फिर ये था चमेली था, फिर उसके बाद ये साली जिंदगी, इरफान खान भी थे,
1: जी
0: तो इस जो भी रोल दिए उन्होंने मुझे उन पर पूरा आंख बंद करके भरोसा रहता था कि श्याम बेनेगल हुए, प्रकाश झा हुए, सुधीर मिश्रा हुए, ये
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: भी रोल देंगे, अनुराग कश्यप हुए, कोई भी रोल देंगे तो मैं आंख बंद करके कर लूंगा, मैंने बिल्कुल नहीं पूछूंगा
1: जी जी
0: जी।
1: क्या बात है। अब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना है। हसन माया
2: डोली में बिठाई के का
1: आप दोनों गा के सुनाएंगे तो

सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोई उसे बताए जाकर दिल धड़कता है उसके लिए, अब तक वो समझाता किस्सा हुआ तमाम। हम जीते हैं उसके सहारे अब तक, वो जो कहता था भूल जाओगे मुझे, दिल न माना उसके इशारे अब तक। रातों की तन्हाई गवाह है, आंखें ढूंढती हैं उसे तारों में अब तक। वक्त ने लाख समझाया दिल को, मगर जख्म देते हैं उसके नजारे अब तक। कोई उसे बताए जाकर इतना के हमने रखा है दिल संभाले अब तक।

श्रोताओं, अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5:30

0: अभी आप बांग्ला कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।

0: और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: नमस्कार, किसान वाणी के आज के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। किसान साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा हम शुभ विचार से करते हैं। हमारा आज का जो शुभ विचार है साथियों, वो है, हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती है। साथियों, कहने का मतलब, जब हम मुसीबत में होते हैं तो प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना, वो दुआएं कभी कभी काम आ जाती है। साथियों, इसी खूबसूरत विचार को लिए हम आगे बढ़ते हैं और किसान वाणी के इस कार्यक्रम में आपसे चर्चा करते हैं जीपीए, आईपीएम और आईएनएम पर।

साथ ही जीपीए, आईपीएम और आईएनएम कम लागत में सुरक्षित और टिकाऊ खेती की ओर कदम। आज की हमारी चर्चा खेती से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर है। इनका सही उपयोग करके किसान फसल की लागत कम करने के साथ साथ मिट्टी की सेहत, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीपीए की। कृषि के संदर्भ में जीपीए से आशय गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी अच्छी कृषि पद्धतियों से है। इसका मतलब है कि किसान खेती के हर चरण में वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीकों को अपनाएं, चाहे वो खेत की तैयारी हो, बीज का चुनाव हो, सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग हो या फसल की कटाई और भंडारण। व्यवहारिक रूप से किसान को चाहिए कि प्रमाणित बीज का इस्तेमाल करें, खेत और उपकरणों की स्वच्छता रखें, मिट्टी की जांच के आधार पर खाद और उर्वरक दें तथा कीटनाशकों का प्रयोग केवल आवश्यकता के अनुसार अनुशंसित मात्रा में करें। इससे अनावश्यक खर्च भी बचेगा और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। साथियों, अब बात करते हैं आईपीएम यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एकीकृत कीट प्रबंधन की। अक्सर किसानों को फसल में कीट दिखाई देते हैं, कीटनाशक का छिड़काव कर देते हैं, लेकिन आईपीएम कहता है कि हर कीट के लिए तुरंत रसायन का प्रयोग जरूरी नहीं है। पहले खेत का निरीक्षण करें और देखें कि कीट की संख्या वास्तव में आर्थिक नुकसान के स्तर तक पहुंची है या नहीं। साथियों, आईपीएम में कई उपायों को एक साथ अपनाया जाता है, जैसे खेत की निगरानी, स्वस्थ बीज का प्रयोग, फसल चक्र, प्रकाश प्रपंच, फेरोमोन ट्रैप, जैविक कीटनाशक और मित्र कीटों का संरक्षण। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, यदि खेत में कुछ ही कीट दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत पूरे खेत में कीटनाशक का छिड़काव करने के बजाय पहले उनकी संख्या और प्रकोप की स्थिति देखें। फेरोमोन ट्रैप या अन्य निगरानी तकनीकों से भी कीट की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इससे कीटनाशक की लागत कम होती है और फसल में रासायनिक अवशेष का खतरा भी घटता है। साथियों, बात करते हैं आईएनएम यानी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन पर। फसल को केवल यूरिया या किसी एक रासायनिक उर्वरक पर निर्भर रखना उचित नहीं है। पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के साथ साथ कई सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। आईएनएम में मिट्टी संरक्षण, जैविक खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, फसल अवशेष और आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग किया जाता है। किसान भाई सबसे पहले मिट्टी की जांच करवाएं, इसके आधार पर ही तय करें कि खेत में किस पोषक तत्व की कितनी आवश्यकता है। गोबर की अच्छी तरह सड़ी खाद या कंपोस्ट का प्रयोग करें। रासायनिक उर्वरकों को अनुशंसित मात्रा में दें, इससे मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है और अनावश्यक उर्वरक पर होने वाला खर्च भी कम होता है। किसान साथियों, जीपीए, आईपीएम और आईएनएम को अगर हम एक साथ समझे तो ये खेती के तीन महत्वपूर्ण आधार बन जाते हैं। साथियों, आज आवश्यकता केवल अधिक उत्पादन की नहीं बल्कि सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ उत्पादन की है। इसलिए खेती में किसी भी दवा या उर्वरक का इस्तेमाल केवल देखकर या किसी की सलाह पर ना करें। कृषि विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग की अनुशंसा के अनुसार ही इनका प्रयोग करें। लेबल पर दी गई मात्रा और सावधानियों का भी पालन करें। साथियों, अंत में हम आपको यही संदेश देना चाहेंगे कि सही कृषि पद्धति अपनाएं, कीटों को समेकित प्रबंधन करें और पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग करें।

साथियों, ये थी हमारी चर्चा GPA, IPM और INM पर। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। साथियों, हमारा आज का प्रश्न है, खड़ी फसल में छिड़काव के लिए यूरिया के घोल की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। किसान भाइयों, प्रश्न के उत्तर सोचते रहें और कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के तहत इस प्रश्न का सही उत्तर हम आपको अवश्य ही बताएंगे। साथियों, आप में से अधिकतर कृषक भाई बहन पशुपालन करते ही हैं और पशुपालन करते वक्त हमारे किसान साथी बहुत सारी बातों को मद्देनजर रखते हैं। अगर कोई भी पशु जब हम पालते हैं तो उसकी नस्लों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी होता है। साथियों, आज हम बातचीत करेंगे देसी नस्ल गिर गाय के विषय में। इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में हैं अचंबाड़ की रहने वाली श्रीमती कुर्मावती। आइए सुनते हैं इनके साथ की गई ये बातचीत।

0: साथियों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में है एटमपाड़ की रहने वाली श्रीमती जी कुर्मावती। कुर्मावती जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: साथियों, आज हम देसी नस्ल गिर गाय के विषय में कुछ बातें करेंगे। कुर्मावती जी, आपने क्यों सोचा कि आप गिर गाय ही पाले?
1: जी, मेरा इंटरेस्ट था, गाय पालना था। लगभग पिछले 10-12 साल से गाय पाल रहे हैं हम लोग।
0: अच्छा।
1: तो देसी गाय जो है हम लोग का मेन मोटिव, देसी गाय का दूध जो है हम लोग को पीना है। बाहर से जर्सी वगैरह जो भी है, वो मिक्स वाला जो दूध, उनको वो उतना सूटेबल नहीं रहता है हम लोग के लिए। तो उसका वजह से, वो इंटरेस्ट की वजह से, हस्बैंड और दोनों मिलके सोच के ये डिसीजन लिए कि देसी गाय मेन हम लोग का मोटिव। तो उससे हम लोग वेटनरी डिपार्टमेंट से भी हम लोग को बहुत हेल्प मिला कि ऐसा, मतलब आप लोग इंटरेस्ट है तो पालने से अच्छा है। वो जो डिपार्टमेंट हम लोग को हेल्प किया है, उसका वजह से हम लोग इतना कर पाए हैं। अभी मेरे पास अभी 6 से 7 गाय है, बच्चे के साथ में 10 गाय, पूरा छोटा बच्चा बड़ा सब 10 गाय है। गिर गाय जो है फर्स्ट पहली बार मैंने हम लोग नील आइलैंड से परचेस करे। नील आइलैंड जो है मेरा ससुराल है, तो वहाँ ससुराल से हम लोग आना जाना रहता है। तो वहाँ हम लोग फर्स्ट देखे, वहाँ पसंद आया, उसका मिल्क रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था। उसका वजह से जो हम लोग को इंटरेस्ट आया, जो मेहनत करते हैं उससे और मेहनत भी कम पड़ेगा और दूध का उत्पादन अगर ज़्यादा मिलता है तो हम लोग आमदनी भी ज़्यादा होगा। उसका वजह से हम लोग जो है वहाँ से गाय परचेस करे।
0: जी।
1: तो परचेस करके लेके आने के बाद, वहाँ से आने के बाद यहाँ बच्चा दिया, बच्चा लेके फिर उससे ऐसे एक के बाद एक बढ़ते गया।
0: गिर गाय की पहचान कैसे कर सकते हैं?
1: गाय का जो मतलब पहचान, बोल से हम्प जो है ऊंचा रहेगा और फेस भी उसका बड़ा सा दिखेगा, और मेन तो कान है, कान जो लंबा लंबा होता है, कान का वजह से उसको पहचान करेंगे कि हम लोग ये गाय जो है गिर गाय है।
0: अच्छा। कुर्मावती जी, गिर गाय की उम्र लगभग कितनी होती होगी?
1: 10-15 साल तक हो सकती है, लेकिन मेरे पास जो है 3 से 4 साल का गाय मेरे पास है।
0: जी
1: जो
0: जी
1: भी है 3 से 4 साल।
0: आप 3 से 4 साल से पाल रही हो
1: हाँ,
0: अभी?
1: पाल रही हूँ।
0: जी। और गिर गाय दूध कितना देती है?
1: दूध एक एक टाइम में 7-8 लीटर एक टाइम में देती है। तो हम लोग
0: अच्छा।
1: मिनिमम हम लोग 12 लीटर एक दिन में हम लोग निकालते हैं।
0: जी। एक दिन में आपको 12 लीटर दूध मिल जाता है गिर गाय से, सुबह और शाम मिलाकर?
1: मिलाकर
0: क्या गिर गाय गर्मी सहन कर सकती है?
1: बहुत कम, मतलब उसको टेम्परेचर जो है, मतलब गर्मी बहुत उसको सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब थोड़ा देर में उसको ज़्यादा शेड के अंदर ही हम लोग रख के पालते हैं, बाहर बहुत कम छोड़ते हैं। सुबह 1 घंटा के लिए बाहर छोड़ते हैं और उसके बाद उस फीडिंग करके वापस आने के बाद उसको बांध के फिर अच्छी तरीके से उसको साफ सुथरा रख के वैसे ही रखते हैं। तो गर्मी मेरा हिसाब से बहुत कम ही वो कर पाती है।
0: जी। गिर गाय को आप रखती हो, गिर गाय
1: जी
0: के लिए जो
1: जी
0: शेड बनाते हैं
1: जी
0: उनका रख रखाव आप कैसे करते हो?
1: बस सुबह मतलब सफाई ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट है,
0: जी
1: तो सफाई करते हैं उसको लेके, सब घास वगैरह

0: भी डालते हैं तो सब उसको साफ करना, उसके बाद में मेन साफ सुथरा रखना जरूरी है, मतलब छोटा सा छोटा गंदा भी नहीं रहना, वैसा में साफ ही रखना है।
1: जी
0: शेड, अच्छा शेड बना है हम लोग का एटम पहाड़ में।
1: जी जी
0: तो
1: बाकी गायों के मुकाबले जो है गिर गाय को ज़्यादा
0: हाँ
1: साफ सुथरा रखना
0: रखना
1: पड़ता है
0: पड़ता है।
1: जी। और ये गिर गाय का जो स्वभाव है वो कैसे हो?
0: वो बच्चों जैसा है, मेन
1: जी
0: छोटे बच्चे जैसा हम लोग से गोल गुल मिल जाते हैं, वैसे जो है वो मतलब हम लोग को आवाज पहचानेगी,
1: जी
0: और उसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं उसका जो हम लोग का मतलब जैसा हम लोग आते हैं तो वो आवाज करेगी अलग से। बच्चे भी मतलब ऐसा हम लोग सोचते हैं ना, तो उससे हम लोग से मेल मिलाव ज्यादा रहता है,
1: जी
0: तो छोटे बच्चे जैसा हम
1: उनका
0: लोग
1: स्वभाव छोटे बच्चे जैसा
0: बच्चे
1: है।
0: जैसा ही है, तो देखने में डरावना लगेगा देखने से, लेकिन बिल्कुल मतलब बच्चों जैसा ही है। हम लोग प्यार करेंगे तो प्यार भी उसको पता है, गुस्सा है तो गुस्सा भी उसको पता है,
1: अच्छा
0: बात करते हैं हम लोग उसके साथ में तो बातचीत भी है, ऐसा लगेगा कि हम लोग बात सुन रहा है
1: अच्छा
0: ऐसा।
1: अच्छा अच्छा
0: जी
1: और इनका जो खाना पीना होता है, दाना होता है, आप कैसे देते हो?
0: दाना उसका जो मेन है मिक्स करके सब कुछ, मेन गेहूं का होता है, गेहूं मक्का बाजरा सब मिक्स करके उसका गुड़ मिक्स रहता है उसमें,
1: जी
0: तो रेडीमेड मिलता है वहां से, हम लोग परचेसिंग करते हैं,
1: जी
0: तो परचेस करके उसको सुबह शाम खिलाते हैं। पहले 1 घंटा पहले उसको भिगाना पड़ता है, भिगा के वहाँ रख के उसको फिर उसके बाद में उस दाना नमक वगैरह मिनरल मिक्सचर सब मिक्स करके उसमें घास भी डाल के फिर उसको देते हैं।
1: इस तरह से आप जो है गिर
0: जी
1: गाय की
0: देखभाल
1: भोजन
0: करते
1: की तैयारी करते हैं, गिर गाय को दाना देते हैं
0: जी।
1: जी। इसके अलावा और क्या देते हैं?
0: इसके अलावा तो धूप का टाइम घास का प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग पुआल होता है जो धान का, वो पुआल लेके रखते हैं, उसको भी पीस पीस काट के उसको देखना है ऐसा में करते हैं।
1: अच्छा, पुआल को पीस पीस काट के भी
0: काट
1: आप जो है
0: मतलब वेस्ट नहीं होगा,
1: जी।
0: अगर ऐसे ही दे देंगे तो वेस्ट करेगा पूरा, इधर मक्की अगर तंग करता है भी है तो वेस्ट नहीं होने के लिए वो चीज़ जो है पीस पीस काट के उसको फीड करते हैं।
1: गिर गाय को कौन कौन सी बीमारियां होती है?
0: मेन बीमारी अभी तक हम लोग उसमें देखे हैं फुट मतलब पाँव में जो है उसका, कीचड़ में जाने के बाद में कीचड़ से उस वापस आके अगर साफ नहीं किया भी है तो उसमें क्या कीड़ा लग के घाव जैसा होके उसमें ज़्यादा फैल जाता है, और मुंह में भी छाला पड़ता है उसको, उसका वैक्सीन भी लगता है हर साल, वैक्सीन 1 साल में 1 बार वेटनरी डिपार्टमेंट से आके वैक्सीन लगाते हैं उसको, हिसाब से वैक्सीन अगर लगाते हैं तो ज़्यादा नहीं होता, मेन प्रॉब्लम तो है। और सर्दी खांसी होता है, सर्दी मेन सर्दी होता है, उसके लिए क्या आगी जला के
1: जी
0: उसको धूप वगैरह देंगे तो संभालू पत्ती एक है वो पत्ती को भी उसमें डाल के अगर उसका धुआं देते हैं तो जैसा सर्दी पूरा जो हम लोग महसूस करते हैं कि वो बाहर आता है उस तरह में बहुत कुछ उसको आराम मिलता है उस तरह में।
1: जी जी
0: मेन बारिश का मौसम में ये सब
1: बारिश,
0: होता है,
1: गर्मी और बारिश के समय आप कैसे देखभाल करते हैं गिर गाय की?
0: गर्मी का मौसम में उतना हम लोग को पहचान मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है जितना बारिश का मौसम में,
1: जी
0: और दूध भी ज़्यादा मतलब गर्मी का मौसम में दूध ज़्यादा होता है, लेकिन वही है कि हम लोग साफ सुथरा रखना है उसके लिए थोड़ा सा छोटा मोटा प्रॉब्लम्स तो होते ही है, लेकिन बारिश के मौसम में हम लोग ज़्यादा बांध के रखना, बाहर नहीं छोड़ना उसको, 1 घंटा के लिए भी जो पहले छोड़ते थे तो वो 1 घंटा भी हम लोग उसको हम लोग देखभाल करना पड़ेगा हर बार, उसको साथ में अगर गोबर भी किया तो उसको साफ करना, उसको फिर पाइप से पानी उन्हें दे के फिर सफाई करना, उसको फीडिंग कराना, घास नहीं मिलता है तब, घास बारिश के मौसम में घास मिल जाता है टेंशन नहीं है, लेकिन गर्मी के मौसम में ही घास का थोड़ा सा होता है,
1: प्रॉब्लम
0: उसमें
1: होता है।
0: दाना से हम लोग कवर करते हैं
1: अच्छा,
0: जितना
1: दाना
0: हाँ
1: देते हैं।
0: उसको फिर 3 टाइम कर देते हैं, 3 टाइम में दाना अगर हम लोग खिला अच्छा से खिला देते हैं तो दूध का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है।
1: ये जो दाना चारा पानी देते हो तो कितनी मात्रा में आप देते हो?
0: वही फर्स्ट सुबह में आपको 2 से 3 केजी का हिसाब रहता है, उसमें नमक वगैरह मिला के सब करके फर्स्ट वो दाना भिगा के रखते हैं उसको देते हैं, और दोपहर में तो उतना नहीं रहेगा मतलब 10 बजे तक उसको फीडिंग खिलाने के लिए दे
1: एक
0: देते हैं,
1: समय
0: हाँ
1: में
0: एक समय
1: जी,
0: सुबह शाम,
1: सुबह शाम
0: सुबह शाम
1: जी,
0: देते हैं,
1: और दोपहर के समय।
0: दोपहर के समय पानी रखते हैं तो पानी पी लेता है, वैसे बांध के वैसे रखते हैं।
1: अच्छा, गिर गाय एक बार में कितने महीने तक दूध देती है ये?
0: हम लोग का पास जो रिकॉर्ड है उसका
1: जी
0: हिसाब से उस बच्चा दिया उसके बाद में 8 महीना तक का वो बच्चा मतलब थोड़ा बड़ा हुआ 8 से 10 महीना तक का दूध देता है, उससे पहले वो 1 महीना मतलब जैसा भी फर्स्ट में ज़्यादा दूध दिया
1: जी
0: 8 8 लीटर 10 लीटर एक टाइम में दिया है।

0: ऐसे ऐसे थोड़ा कम होगा, लेकिन टोटल 8 महीना आपको
1: बराबर
0: मिलेगा।
1: जी जी, गिर गाय के दूध में फैट कितना होते हैं?
0: फैट अधिक मात्रा में होता है, A2 मिल्क बोलते हैं उसको। तो फैट का मतलब एग्जैक्ट इतना है करके तुम नहीं बोल सकती, लेकिन फैट बाकी गाय से इसका तुलना में ज्यादा है। फैट का मात्रा बेचते हैं हम लोग दूध, तो हम लोग घर में वहाँ जाके हम लोग को देना नहीं पड़ता, घर वापस वहाँ
1: आपके घर आके लोग दूध लेकर जाते हैं। जी जी,
0: यही मेन रीजन है कि गिर गाय पालना मुझे।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, कुर्मावती जी ये बताइए, गिर गाय गर्भ कितने दिन तक रखती है?
0: फर्स्ट बेबी देने के बाद 45 डेज से 50 डेज में वो अपना हीट में आता है गाय, तो उसके लिए हम लोग देखना पड़ता है, उसको ध्यान देना पड़ता है। अगर वो अगर 24 आवर्स में अगर हम लोग इंजेक्ट करते हैं तो रुक जाएगा, अगर नहीं करके मतलब छोड़ दिए तो नेक्स्ट टाइम फिर 21 डेज में आपको फिर से आपको मतलब फर्स्ट 3 महीना में बच्चा देने का, फर्स्ट 3 महीना में जो है वो हीट में आएगा। वो मतलब हीट में आने का रीजन है कि वो आवाज करेगा, उससे पता चल जाएगा, तो हम लोग ध्यान देना पड़ता है वो सब केयरफुली उसको। फिर वेटरनरी डिपार्टमेंट में जाके एंट्री वेंट्री करा के फिर आने का, उन लोगों को बुलाने के बाद फिर इंजेक्ट करेंगे, तो सेम वही नस्ल का हम लोगों को मिलेगा। नहीं तो फिर अगर बाहर हम लोग छोड़ देंगे, बुल से क्रॉस हो गया तो फिर वो चेंज हो जाएगा वैसा में।
1: तो इसके लिए देखभाल आपको काफी करनी पड़ती है,
0: करना पड़ता है।
1: जी जी, गिर गाय की पहचान के लिए कौन सा टैग लगाते हैं?
0: आधार कार्ड से लिंक होता है, जो किसान पालते हैं तो उससे रिलेटेड वो टैग होता है, एग्जैक्ट तो वही।
1: अच्छा, यही होता है।
0: हाँ, मेन तो कान है उसका, कान से ही पहचानते हैं।
1: अच्छा, मेन कान,
0: कान लंबा लंबा कान का वजह से पहचानते हैं।
1: मान लीजिए अगर कोई किसान गिर गाय खरीदना चाहे
0: जी,
1: तो गिर गाय की कीमत क्या हो सकती है?
0: प्रेजेंट जो है 70 to 80 thousand, कभी कभी मतलब उसका रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड उसका मम्मी का जैसा रिकॉर्ड दूध देने का, जो मतलब ज्यादा दूध दे रहा है, तो 1 लाख भी पार होता है, 1 लाख अबव।
1: गिर गाय और जर्सी गाय जो होती है उसमें क्या अंतर पाया जाता है?
0: अंतर यही है, गिर गाय में बीमारी कम होता है, और जर्सी गाय जो हम लोग पालते हैं वो क्रॉस किया हुआ ब्रीड रहता है, वो देसी नस्ल नहीं है, मेन विदेशी है। अगर एवन दूध पीते भी है तो हम लोग को बदन के लिए सूटेबल नहीं है, किसी किसी को एलर्जी हो जाता है या तो फिर कुछ ऐसा कुछ हो जाता है। तो A2 मिल्क इसलिए है कि वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, मतलब जैसा पीते हैं हजम होने के लिए भी वो बहुत इजी पड़ता है, वैसे बच्चों को देने देते भी हैं, तो इसीलिए वो A2 मिल्क ही अच्छा है। A1 जो दूध पियेंगे तो बीमारी ज्यादा हो जाए पड़ता है, और गाय में भी बीमारी ज्यादा है, जैसी गाय जो हम लोग है उसमें बीमारी ज्यादा से ज्यादा होता है। बारिश के मौसम में तो वो मतलब रह नहीं सकेगा, वो गर्मी भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसा में जर्सी गाय बहुत, उसका वजह से हम लोग पाले नहीं गाय,
1: जर्सी गाय आप नहीं पाले?
0: नहीं पाली।
1: जी जी, गिर गाय की तरफ आपका खिंचाव हुआ और आपने गिर गाय को ही पालना सही समझा।
0: जी
1: जी, कुर्मावती जी, गिर गाय की महत्व क्या है? गिर गाय की महत्व के बारे में थोड़ा बताइए।
0: गिर गाय का महत्व यही है कि हम लोग वैसे हम लोग नॉर्मल गाय से 2 लीटर 3 लीटर दूध मिलता है, वैसे में हम लोग को घर का खर्चा भी नहीं चलता है, तो ये चीज हम लोग गिर गाय पालने से ये है कि दूध ज्यादा, दूध का आमदनी जो है ज्यादा होता है, तो उसका वजह से हम लोग प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, और हम लोग अच्छे से हम लोग घर का खर्चा भी चला सकते हैं। मतलब वही है, किसान के लिए मेन प्रॉफिट भी देखना पड़ता है ना एक साइड से, तो वो चीज जरूरी है। मतलब नॉर्मली जो है दूध का रेट 120 रुपीस चल रहा है अभी। पहला बेस्ट पॉइंट है कि घर आके मेरा गाय का दूध का जो क्वालिटी है उसका हिसाब से घर आके दूध लेके जा रहे हैं सभी
1: लोग, आपके घर आके दूध लेके जाते हैं।
0: मेरे पास अभी प्रेजेंट जो है 18 से 20 लीटर का दूध मेरे घर से अभी जा रहा है, गिर गाय का दूध, तो वही आमदनी अच्छा होता है, बस कंटिन्यू दूध रहता है घर में।
1: अच्छा, दूध रहता है,
0: कंटिन्यू दूध रहता है।
1: आपको सरकार की तरफ से
0: जी
1: कुछ सुविधाएं मिलती है गिर गाय आप पाल रही हो?
0: सब्सिडी है, कुछ कुछ लोन्स वगैरह है, अभी तक हम लोग लिए नहीं, ट्राई कर रहे हैं।
1: कुर्मावती जी, आपने देसी नस्ल गिर गाय के विषय में बहुत अच्छी जानकारी दी, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहती है?
0: मैं यही लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है खाली बैठे हैं, लेडीज जो है घर में ऐसी बैठे हैं, उन लोग को मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए। वैसे में हम लोग गिर गाय का जो पालन है बहुत इजी भी है, अगर इंटरेस्टेड है जो भी महिलाएं इंटरेस्टेड है वो लोग अपना आमदनी बढ़ाने के लिए आप लोग परचेस, गिर गाय को परचेस करके आप छोटा सा जगह में भी आप पाल सकते हैं।
1: कुर्मावती जी, आपने देसी नस्ल गिर गाय के विषय में बहुत अच्छी जानकारी

देसी नस्ल गिर गाय। साथियों, इस विषय पर अभी आपने श्रीमती कुर्मावती के साथ की गई ये बातचीत सुनी। बड़े ही विस्तार से उन्होंने जो देसी नस्ल होता है गिर गाय के विषय में बहुत अच्छी जानकारी दी। साथियों, इस गाय के दूध से कितना फायदा होता है, इस बारे में बहुत सारी जानकारी आपने अभी हासिल की। उम्मीद करते हैं इनकी बातचीत हमारे तमाम किसान साथियों को पसंद आई होगी। किसान भाइयों, अब हम कार्यक्रम का रुख करते हैं संगीत की तरफ और सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: भाइयों, कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। साथियों, हमने आपसे पूछा था खड़ी फसल में छिड़काव के लिए यूरिया के घोल की सांद्रता कितनी होनी चाहिए। साथियों, उस प्रश्न का सही उत्तर है खड़ी फसल में छिड़काव के लिए यूरिया के घोल की सांद्रता 2% तक होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ने अपने उत्तर की जाँच कर ली होगी। भाइयों, इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। कल कृषि जगत के तहत हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
2: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
4: अभी आप किसान वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत आटम पहाड़ की पशुपालक श्रीमती कुर्मावती से की गई बातचीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत करते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शामे बहार।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में आइए सुनते हैं ऐतराज़ फिल्म का ये गीत। बोल समीर के हैं तथा संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में आइए सुनिए फिल्म दोस्ताना का ये गीत बोल आनंद बख्शी के हैं तथा संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शामे बहार का आनंद ले रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं एक आवश्यक सूचना।
1: आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो, अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है।

यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:05 होने वाले हैं। कुछ ही पल में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत मंडपम में 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री ने कहा पर्यावरण संरक्षण के लिए नीति, तकनीक और जन भागीदारी का समन्वय जरूरी। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल में मिला मानद जनरल का रैंक। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शीतल निवास में आयोजित समारोह में प्रदान किया सम्मान। राजधानी श्रीविजयपुरम में अंडमान निकोबार पुलिस और एनएसजी के संयुक्त सहयोग से विशेष पीएसओ तथा सुरक्षित और विशेष वाहन चालन प्रशिक्षण शुरू। और पीएम किसान की अगली किस्त के लिए ई केवाईसी और आधार सीडिंग जरूरी। अंडमान निकोबार कृषि विभाग ने लाभार्थियों से समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की।

सांध्य समाचारों के साथ मैं अनीता क्रिकेट्टा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। इस अवसर पर श्री यादव ने सतत विकास के लिए नीति, प्रौद्योगिकी और जन भागीदारी के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 से 2022 के बीच उत्सर्जन की तीव्रता में 37% से अधिक की कमी की है। भारत की कुल विद्युत क्षमता का आधे से अधिक हिस्सा अब स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होता है। श्री यादव ने कहा कि ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत सभी सदस्य देशों के बीच खुले और रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह द्वारा तैयार 4 ज्ञान संकलनों का भी अनावरण किया गया। इनमें सदस्य देशों की पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अच्छी प्रथाओं, ज्ञान और नवाचारों को शामिल किया गया है। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया गया है। काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान दिया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को काठमांडू पहुंचे थे। मानद जनरल का रैंक प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 से चली आ रही है। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को मानद जनरल का रैंक प्रदान करते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2026 का 5वां संस्करण अगले महीने 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों के 500 से ज्यादा प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अमरीका, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, नीदरलैंड और मलेशिया की प्रमुख कंपनियों के वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ राउंड टेबल बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। सम्मेलन की थीम सिलिकॉन से सिस्टम, इकोसिस्टम का निर्माण है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है वाहन चालन प्रशिक्षण और EKYC। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंडमान निकोबार पुलिस ने NSG के सहयोग से श्री विजयपुरम में विशेष PSO और सुरक्षित और विशेष वाहन चालन प्रशिक्षण शुरू किया है। 2 सप्ताह का यह प्रशिक्षण कल से शुरू हो गया है। प्रशिक्षण में पुलिस के विभिन्न इकाइयों के 100 जवान हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 70 जवान PSO और 30 जवान सुरक्षित और विशेष वाहन चालन का प्रशिक्षण ले रहे हैं। NSG की टीम द्वारा दिए जा रहे इस प्रशिक्षण में VVIP सुरक्षा, क्लोज प्रोटेक्शन, सुरक्षा अभ्यास, वाहन नियंत्रण और सुरक्षित ड्राइविंग जैसी तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अंडमान निकोबार पुलिस के अनुसार इस प्रशिक्षण से VVIP दौरों और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। पुलिस महानिदेशक रविंद्र सिंह यादव ने NSG के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के संयुक्त प्रशिक्षण से पुलिस कर्मियों की पेशेवर क्षमता और सुरक्षा तैयारियों में बढ़ोतरी होगी। राजधानी श्री विजयपुरम में आज किशोर न्याय अधिनियम 2015 के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिला स्तरीय हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में हुई। इसमें पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल देखभाल संस्थानों और किशोर न्याय बोर्ड सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में बच्चों की सुरक्षा, अधिकार संरक्षण, पुनर्वास और पुनर्समावेशन को मजबूत करने तथा बाल अनुकूल प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई। दक्षिण अंडमान की उपायुक्त पूर्वा गर्ग और पुलिस अधीक्षक श्वेता के सुगाथन ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय और जवाबदेही को बाल संरक्षण व्यवस्था मजबूत करने के लिए आवश्यक बताया। अंडमान निकोबार प्रशासन के कृषि विभाग ने PM किसान लाभार्थियों से लंबित EKYC और बैंक खाते की आधार सीडिंग जल्द पूरी करने की अपील की है। संबंधित लाभार्थियों की सूची ग्राम

पंचायतों में प्रदर्शित की गई है। ई केवाईसी पीएम किसान पोर्टल मोबाइल ऐप या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से की जा सकती है, जबकि आधार सीडिंग के लिए बैंक शाखा से संपर्क करना होगा। विभाग ने कहा है कि प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर अगली किस्त रुक सकती है। वर्ष 2026-27 की वार्षिक ई केवाईसी भी समय पर पूरी करने की अपील की गई है। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अंतरिम मेरिट सूची 21 अगस्त को शाम 5 बजे जारी की जाएगी। सूची कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अंतिम मेरिट सूची 25 अगस्त को शाम 5 बजे जारी होगी। बीएड पाठ्यक्रम के लिए काउंसलिंग 27 अगस्त को होगी और कक्षाएं 28 अगस्त से शुरू होंगी। दक्षिण अंडमान के शिक्षा विभाग के खेल अनुभाग की ओर से SGFI 2026 के लिए अंतर विद्यालय अंडर 19 बालक फुटबॉल नॉकआउट टूर्नामेंट सह चयन ट्रायल आज भातुबस्ती मैदान में शुरू हुआ। पहले दिन 4 मुकाबले खेले गए। पहले मैच में राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अबडीन ने VKV लंबालाइन को 1-0 से हराया। दूसरे मैच में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रंगाचार ने पोर्टमुट को 3-2 से मात दी। तीसरे मुकाबले में सीनियर सेकेंडरी स्कूल कारमेल ने ग्यारहचरमा को 2-0 से हराया। चौथे मैच में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल लाइन ने GSS कालीकट को 4-1 से पराजित किया। टूर्नामेंट का आयोजन दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा अधिकारी ज्ञानशील दुबे के नेतृत्व में किया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. पल्लव देवदास की उपस्थिति में NCC कैडेट्स ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस दौरान महाविद्यालय परिसर में 50 पौधे लगाए गए। वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने में पौधारोपण के महत्व पर जोर दिया। NCC कैडेट्स ने लगाए गए पौधों की देखभाल का संकल्प लिया। मत्स्य विभाग ने मत्स्य संग्रहालय से एक्वेरियम परिसर में बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक स्वयं सहायता समूह आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करें। आवेदन 22 अगस्त तक मत्स्य निदेशालय श्री विजयपुरम स्थित सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के प्रथम वर्ष के ट्रेड डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की कक्षाएं 20 अगस्त से शुरू होंगी। विद्यार्थियों को सुबह 8:30 बजे होटल मैनेजमेंट विभाग में रिपोर्ट करने को कहा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत मंडपम में 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री ने कहा, पर्यावरण संरक्षण के लिए नीति, तकनीक और जन भागीदारी का समन्वय जरूरी। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल में मिला मानद जनरल का रैंक। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शीतल निवास में आयोजित समारोह में प्रदान किया सम्मान। राजधानी श्री विजयपुरम में अंडमान निकोबार पुलिस और NSG के संयुक्त सहयोग से विशेष PSO तथा सुरक्षित और विशेष वाहन चालन प्रशिक्षण शुरू। और PM किसान की अगली किस्त के लिए EKYC और आधार सीडिंग जरूरी। अंडमान निकोबार कृषि विभाग ने लाभार्थियों से समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम।
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत।
3: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
0: बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी।
4: माझी पॉलिसी माझा हाथी।
0: बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक।
5: मारी पॉलिसी मारे हाथ।
0: बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर।
6: जन पॉलिसी जन कैयन।
0: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:16 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं।

मौसम विभाग से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में हल्की सी मध्यम वर्षा हुई। जनसेवाओं और मछुआरों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों में हल्की सी मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी स्ट्रेट आइलैंड, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं मार्गों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सुबह 6 बजकर 15 मिनट पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सुबह 6 बजकर 15 मिनट पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और जलियान की वापसी कल ही सुबह 8 बजकर 45 मिनट पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर 22 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और इसकी वापसी अगले दिन यानी 23 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रंगत मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और इस जलियान की वापसी अगले दिन यानी 20 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी भारत सीमा लिटिल अंडमान की यात्रा पर 20 तारीख को सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी उसी दिन रात 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। ये थी जलियानों की यात्रा कार्यक्रम।

0: एक आवश्यक सूचना।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे

0: देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:22 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है हथकरघी आपने इस फिल्म का। आवाज़ें हैं सोनू निगम, बोल आनंद बख्शी के हैं तथा संगीत दिया है आनंद राज आनंद ने।

0: अगला गीत हमने लिया है फिल्म घर वाली बाहर वाली से। आवाजें हैं उदित नारायण और अनुराधा श्रीराम के, बोल समीर के हैं तथा संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।
1: झुम पचक झुपी झुम पचक झुपी झुम पचक झुपी झुम पचक झुपी झुम।

अभी आप फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हमारा कार्यक्रम युववाणी।

यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। कई बार हमें वह नहीं मिलता जिसे पाने के लिए हमने पूरी मेहनत की होती है, और कई बार बिना मांगे ही ऐसी खुशियां मिल जाती है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। कठिन समय हमें तोड़ना नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपी ताकत को पहचानने आते हैं। इसलिए परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, हमें अपने कदम रोकने नहीं चाहिए। जी दोस्तों, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, आज मंगलवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम देश की शान।

दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार, निबंधकार, आलोचक, इतिहासकार और विद्वान थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी गहन विविधता, मौलिक चिंतन और प्रभावशाली लेखन से समृद्ध किया। भारतीय संस्कृति, इतिहास, परंपरा और मानवीय मूल्यों के प्रति उनकी गहरी समझ उनके साहित्य में विशेष रूप से दिखाई देती है। साहित्य के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें हिंदी के प्रमुख युग पुरुषों में स्थान दिया जाता है। दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव में हुआ था। उनके परिवार में संस्कृत और ज्योतिष के अध्ययन की परंपरा थी। बचपन से ही उन्हें अध्ययन में विशेष रुचि थी। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और भारतीय संस्कृति से संबंधित विषयों का गहन अध्ययन किया। उनकी विद्वता का प्रभाव आगे चलकर उनके साहित्यिक जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।

दोस्तों, द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में लेखन किया। वे विशेष रूप से अपने निबंधों और लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके निबंधों में ज्ञान और संवेदना का सुंदर मेल दिखाई देता है। अशोक के फूल, कूटज तथा विचार उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। उनकी भाषा विविधतापूर्ण होने के साथ साथ सहज, रोचक और प्रभावशाली है। वे कठिन विषयों को भी सरल ढंग से प्रस्तुत करने की कला रखते थे। दोस्तों, उपन्यास के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और आनंददास का पोथा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन रचनाओं में इतिहास, संस्कृति, कल्पना और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर मेल देखने को मिलता है। उनके उपन्यासों के पात्र और कथानक पाठकों को भारतीय जीवन और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराते हैं।

दोस्तों, कबीर और मध्यकालीन हिंदी साहित्य के अध्ययन में भी आचार्य त्रिवेदी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कबीर में उन्होंने कबीर के व्यक्तित्व और साहित्य का गहन अध्ययन प्रस्तुत किया। उन्होंने संत साहित्य को व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में समझने का प्रयास किया। साहित्य के इतिहास और आलोचन के क्षेत्र में उनके विचारों ने हिंदी के अध्ययन को नई दृष्टि प्रदान की।

दोस्तों, द्विवेदी जी का साहित्य मानववादी दृष्टिकोण से प्रेरित था। वे मनुष्य के भीतर की अच्छाई, संवेदना, ज्ञान और रचनात्मक को महत्वपूर्ण मानते थे। उनके लेखन में भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी समझ के साथ साथ जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी दिखाई देती है। उनकी शैली में विद्वता, हास्य, व्यंग, भावुकता और चिंतन का सुंदर संतुलन मिलता है।

दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन 19 मई 1979 को हुआ। यद्यपि वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने साहित्य को केवल ज्ञान का माध्यम नहीं माना, बल्कि उसे मानव जीवन को बेहतर बनाने वाली शक्ति के रूप में देखा। हिंदी साहित्य में उनके योगदान के कारण उनका नाम सदैव सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाएगा।

0: क्या आपके ज़िले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर ज़िले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने ज़िले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने ज़िले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने ज़िले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम देश की शान। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।

अभी आप युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत देश की शान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं, आइए अब आनंद लेते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, चित्रपट संगीत का।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म खामोशी से। आवाज़ें हैं कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की, बोल मजरू सुल्तानपुरी की हैं तथा संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply. Nexa.
1: मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में आइए सुनते हैं हद फिल्म का ये गीत। बोल समीर के हैं तथा संगीत दिया है।

कुमार सानू की आवाज़ में आइए सुनते हैं नसीब फिल्म का ये गीत। बोल समीर के हैं तथा संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है स्पॉट बॉय फिल्म से। आवाज़ें हैं उदित नारायण और साधना सरगम के, बोल महबूब पी के मिश्रा के हैं तथा संगीत दिया है राजकोटे ने।

श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं।

आइए सुनते हैं रोजगार समाचार। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी सिविलियन पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती के अंतर्गत असम के तेजपुर स्थित एयरफोर्स स्टेशन में लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी LDC का एक पद उपलब्ध है। इस पद के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। पूर्व सैनिकों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। 6 महीने या उससे अधिक के निरंतर सैन्य सेवा कर चुके पूर्व सैनिकों की वास्तविक आयु से उनकी सैन्य सेवा की अवधि घटाकर आयु की गणना की जाएगी। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य पात्र श्रेणियों के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि अनारक्षित पद के लिए आवेदन करने वाले SC, ST और OBC उम्मीदवारों को केवल जाति के आधार पर आयु में छूट नहीं मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति आवश्यक है। पद का वेतन 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 2 के अनुसार होगा। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेजों की स्व सत्यापित प्रतियों के साथ अपना आवेदन एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर असम 784104 के पते पर भेज सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार रोजगार समाचार के 1 से 7 अगस्त 2026 के अंक में प्रकाशित भारतीय वायुसेना के विज्ञापन को देखें। ये था रोजगार समाचार। आइए अब सुनते हैं गौरवगान।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। गोल में भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 372 रन का लक्ष्य दिया। मेजबान टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बनाए। और भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से।

0: भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: The impact of climate change,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की चार प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदा से उबरने की क्षमता विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अभियान युवा ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी। आज समाप्त हुए 2 दिन के सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के नेतृत्वकर्ता एक साथ आए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख प्राथमिकताओं, उभरते अवसरों और बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य पर विचार विमर्श किया गया। इस बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB ने पिछले एक साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने बताया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण सुविधा का विस्तार करके और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना जारी रखा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। श्री जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है।
3: जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावे बहुत लोगों को इंजरीज भी आई हैं, और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है।

0: और हालात ऐसी है कि जो वहां पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडेरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जाँच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। मतदाताओं के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए एक महीने का समय होगा। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जनकल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि कम समय में पश्चिम बंगाल के विकास की नई नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज का आकलन जनता करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को आदेश दिया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलवाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। ईरान ने दोहराया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य समुद्र यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट।
3: ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए होर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना नाकेबंदी की समाप्ति, सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ईरान के साथ कोई वार्ता नियोजित नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने फलस्तीन के विदेश मंत्री और प्रवासी मामलों के मंत्री

0: वारसेन अगा बेकियन शाहीन से मुलाकात की। फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत फलस्तीन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इनमें विकास सहयोग से जुड़े विभिन्न परियोजनाएं भी शामिल हैं। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं लक्ष्य सेन और उन्नति हुड्डा ने सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में भारत के लिए नवनीत कौर, सुनेलिता तोपो, सुशीला चानू, दीपिका लाल रिमस्यामी और साक्षी राणा ने गोल दागे। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। वहीं एक बहुप्रतीक्षित मुकाबले में कल अम्स्टरडैम में भारतीय पुरुष टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। अरब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम और माहे, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में कल बादल गरजने तथा बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दक्षिणी आंध्रीय कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। BRICS nations reaffirm commitment to environmental protection and sustainable development. New Delhi stresses environmental action must address needs of developing countries. India says credibility of country's election machinery well established globally as US President Donald Trump praises poll system. Supreme Court to form high-powered panel to probe allegations of police excesses and violence against security personnel during Delhi students' protests. Pakistan's top court orders transfer of jailed former Prime Minister Imran Khan to hospital for medical examination. Iran reiterates Strait of Hormuz to remain closed till all its conditions agreed with US are fully met. In men's cricket, India tightened grip on Gal test against Sri Lanka on day 4. Host reel at 84 for 4 at stumps, chasing a 372-run target. And Indian women's doubles pair of Trisha Jolly and Gayatri Gopichand advanced to pre-quarterfinals of Badminton World Championships in New Delhi. And now the news in detail. BRICS nations today reiterated their commitment

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजने को है। अब प्रस्तुत होता है आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम संदेशे आते हैं।

श्रोताओं, आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम संदेशे आते हैं में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए। हाँ, हमारा नंबर है 9474234000। इस नंबर पर हमें अपना नाम, पता, फिल्म का नाम और गीत के बोल लिख भेजें, ताकि हम आपके मन पसंदीदा गीत आप तक पहुंचा सकें। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहला संदेश हमें आया है भोपालगढ़ राजस्थान से। धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, ईशान छिम्पा और पूजा परिहार का ये सुनना चाहते हैं मौसम फिल्म का ये गीत।

अगला फरमाइश हमें आया है बीड शहर महाराष्ट्र से, नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे का। जो सुनना चाहते हैं फिल्म दूत का कर्ज, फिल्म का ये गीत।

अप्रैल फूल इस फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी।

श्रोताओं, अभी आप फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम संदेशे आते हैं सुन रहे थे। अब ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। जन सेवाओं और मछुआरों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों में हल्की सी मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हमारी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz पर विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह के 28वीं तिथि, तदनुसार 19 अगस्त सन 2026। सवेरे के 5:28:32 हुए हैं। हमारी आज की इस प्रातःकालीन प्रसारण सेवा में आप सभी का हार्दिक अभिवादन।